0: प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मीना मैम
1: जी,
0: कि थोड़ा हमें आध्यात्म के बारे में बताइए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए। मतलब मैं और मेरे सीधे साधे सुनने वाले लोग आध्यात्म से क्या समझें, आध्यात्म का क्या मतलब है मैम?
1: आध्यात्म का मतलब है टू जस्ट बी।
0: ओके,
1: जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे आप रहो, यानी अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस स्वभाव में कोई भी गलत रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे इफ यू आर काइंड हार्टेड,
0: जी,
1: आप दयालु हो स्वभाव से, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे हो इसलिए छले जाते हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हर एक इंसान को ईश्वर किसी खास वजूद से बनाता है और सबका ही अलग अलग ध्येय होता है लाइफ में। अगर वो समझ में आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना आए तो जब आप तैयार हो जाते हो तो कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता है आपको समझाने के लिए कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो अध्यात्म इस अपने आप से जुड़े रहना एट ऑल टाइम्स।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और
0: हाँ जी बोलिए।
1: हमारा विचार ये है कि हम मनुष्य हैं और सत्य की खोज में हैं, है ना
0: जी,
1: लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम ही वो सत्य हैं और मानवता में हमने अपने आप को खो दिया है, वो सच्चाई है।
0: ओके, ऑलराइट मैम, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपसे और प्रार्थना करूं समझाने के लिए कि आपने कहा हम मानव हैं और थोड़ा सा हम खो गए हैं, थोड़ा सा हम शायद भटक गए हैं, ऐसा क्यों कहा मैम आपने? मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं या शायद हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझ गया है, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को?
1: जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, पहले ही अध्याय में कहा कि हमको दो चीजों ने जकड़ के रखा है इस संसार में, एक तो शोक दूसरा मोह
0: जी,
1: सौरो एंड डिल्यूजन। सौरोस तो तरह तरह के हमारे शोक होते हैं, है ना, कोई चीज गुम गई या किसी से लड़ाई हो गई या किसी से हमने बात की और उसने सही जवाब नहीं दिया, ऐसे शोकों की मतलब कतार बनी रहती है रोज रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अंदर से आनंद रूप हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं इन सब में उलझते उलझते उलझते, इसलिए कहा कि मानवता में हम भटक गए हैं। और मोह किस चीज का, पहले तो ये गलत फहमी है कि ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बताना जरूरी है
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि ये जो शरीर है जिसका नाम मीना है ये मैं हूँ
0: जी,
1: लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं है
0: जी,
1: एक्चुअली पूरा कॉस्मोस हम ही हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये बेसिकली वेदांत में यही समझाया जाता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसे ढूंढने में लगे हो वो आप खुद हो।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे मुझे ठीक से याद आ रहा है मीना मैम, कुछ समय गुजरा मैंने रोंडा ब्रायन की वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में बोला गया है, तो उसमें एक जगह पर समझाया गया कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जी से बना है, कोई भी एक छोटे से छोटा कण इस प्रकृति में एनर्जी से बना है, एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना दोबारा बनाई जा सकती है, ये हमेशा है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है और ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है, तो उसमें ये बोला गया तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए, अलग हैं ही नहीं, हम भी वही एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही एनर्जी है।
1: हाँ।
0: तो हम किस धोखे में जीते हैं कि

0: मैं ही मैं हूं, मेरा अपना स्वार्थ, मेरा अपना पाना। आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है। मतलब उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा
1: जी, हाँ।
0: लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया
1: जी।
0: बहुत खूब दोस्तों, विचार कीजिए। हाँ। ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का ही है। जैसा मैम ने पहले ही कह दिया कि आध्यात्म जो हम हैं वही रहे हैं, इसी की कहानी है ना, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम, आपने
1: हाँ जी
0: बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको आध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला, किसने बताया?
1: किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है
0: जी,
1: करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर कि नहीं मुझे जाना है। और वो जो भी बोलते थे, कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें।
0: अच्छा।
1: और टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी और बहुत ही आध्यात्मिक थी वो। हर रोज मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस, ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई, मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती भी हूँ थोड़ा बहुत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रहीं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर दोस्तों। मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहेगी कि बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: मीना मैम, आगे बढ़ते हुए हमने बात करी आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की।
1: यस,
0: जब हम इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं मैम, तो एक शब्द पीछे नहीं रहता, वो भी फौरन आगे आ जाता है, वो है धर्म।
1: जी,
0: अब कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये सारी बातें नॉर्मल साधारण इंसान के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सारी भाषाएं साधु संतों की हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों की हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन हमें बिल्कुल सरल भाषा में बताइए मैम, क्या फर्क है ये दोनों शब्दों में, आध्यात्म और धर्म? हाँ।
1: धर्म की सहायता से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, यानी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
0: जी।
1: अगर आपने बहुत सारा ज्ञान पाया और उसके बाद अगर आप भगवान के भक्त नहीं हुए तो वो ज्ञान व्यर्थ है।
0: जी।
1: और अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है तो वो एक तरह का पागलपन है, फैनाटिकिज्म जिसे बोलते हैं ना।
0: जी।
1: तो ये ऐसा है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने हम सबको नियंत्रित कर रखा है या जो शासन चलाती है इस संसार में।
0: जी।
1: और आप अगर अपने आप को ही देखिए, आपके पास ये शरीर है, मतलब आपके पास अगर कोई चीज है तो वो आपसे अलग हुई हुई कि नहीं?
0: जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, शरीर हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास ये शरीर है।
1: हाँ, तो शरीर आपके पास है तो शरीर आपसे अलग है। मन आपके पास है, आप अपने विचारों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मन भी आपसे अलग है। बुद्धि में अलग अलग विचार आते हैं, कई डिसीजंस आप लेते हो, बुद्धि भी आपसे अलग है ना। और इन सब के परे आपको कैसे ये सब दिखता है या समझ में आता है या महसूस होता है या एहसास होता है? क्योंकि आपके पास एक आत्मशक्ति है ना। वो आत्मशक्ति परसीवेबल नहीं है
0: जी,
1: लेकिन अगर आप इन सब से छूट जाओ, ध्यान करते हुए क्या होता है, यही होता है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। ऐसे जब आप माइनस करते जाओगे तो अपने आत्म स्वरूप में पहुंचते हो, और उसमें जो क्या बोलते हैं, अनब्रोकन ब्लिस जो मिलता है वो किसी और चीज में आपको नहीं मिलेगा। ये अनुभव करने की बात है। वैसे पढ़ पढ़ के हम बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली समझ तो जाते हैं, लेकिन जब तक ध्यान में बैठकर इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम खुद आनंद रूप हैं। तो रिलीजन हेल्प्स यू, जब आप उस शक्ति को मानते हो, उसके बारे में स्तुति करते हो, उसके लिए कोई नियम पालन करते हो कि थोड़ी सी पूजा कर लें, ये स्तोत्र पढ़ लें, ये मंत्र पढ़ लें, तो आपका मन शुद्ध होता है उससे। और जो शुद्ध मन होता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। जब तक विचलित रहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो धर्म और ये अध्यात्म साथ साथ चलें तो बढ़िया। और धार्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करें, उसको तपस्या की तरफ ले जाएं, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो दोनों अलग नहीं है, लेकिन वन शुड कल्मिनेट इनटू द अदर, अंग्रेजी में कहें तो।
0: जी जी, बहुत बहुत सुंदर। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में अभी दो प्रश्न आ रहे हैं मीना मैम,
1: कहिए।
0: मैं पूछता हूं, लेकिन बस एक छोटे से पॉज के बाद एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास।
1: जी।

0: रीना मैम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की, कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो
1: राइट राइट,
0: प्रश्न मेरा यह हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच और ये सॉरी धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती
1: मुश्किल है।
0: तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर वन, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं और जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे नेगेटिव माइनस करते गए, आपने बोला ना, हम डिलीट करते गए चीजों को और फिर हम अपने आत्मशुद्ध आत्मा तक पहुंचे
1: जी।
0: तो साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ।
1: ओके,
0: दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्म शुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए। आपने कहा ना, आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये पवित्र की डेफिनेशन बताएं, ये पवित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मैं पवित्र हो गया मतलब क्या, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे।
1: ओके, ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है
0: जी।
1: यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूं और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं
0: जी,
1: ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, तब आप उस पे विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना
0: जी।
1: तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो कर्ता धर्ता ईश्वर है वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल क्या कहें, मच लर्नेड, जो ज्ञानी लोग होते हैं
0: जी,
1: वो ध्यान लगा सकते हैं आसानी से और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल्म में पहुंच सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना, मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट,
0: हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है।
1: हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती
0: जी है। हाँ, जी हाँ, वो भी बड़ा फैशनेबल है।
1: हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस। ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती
0: जी,
1: किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है बोल रहे ना, नेति नेति, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है वो।
0: अच्छा,
1: कोशिश okay. नहीं करनी पड़ती,
0: एट दस फॉर द मोमेंट।
1: हाँ
0: ओके ओके। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे
1: पवित्रता
0: पूछा,
1: हाँ, जी, पवित्रता जी. के माने हम मनुष्यों के लिए छह शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में
0: जी।
1: सबसे पहले तो डिजायर, कामना। ओके अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं। जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको
0: जी,
1: प्राइड आ जाता है। और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ, तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है
0: जी।
1: और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना
0: बंद
1: हो जाएगा
0: जी।
1: एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षटरिपु कहते हैं संस्कृत में, छह दुश्मन हमारे
0: जी।
1: तो अरे ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग।
0: करेक्ट,
1: ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है
0: जी।
1: कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है। लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जा रहे तो आप पवित्र रहोगे। क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना, क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है
0: जी।
1: उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही।
0: ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट। बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूं। 50% अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं करना है। तो कई कई मौके आज कल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी
1: जी।
0: और चलिए टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है, आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था। अब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो ठुकेगी भी,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात, गाड़ी ठुकी, पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी, वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है
1: जी,
0: कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और मैं बहुत बड़ा हूं। मैम वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की, मैंने कोई गलती की नहीं फिर भी मैं पिट रहा हूं। ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दे इसको। वहां पर पवित्र मन का क्या मतलब हुआ, पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा, मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके?
1: नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए
0: जी,
1: और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है, तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह, नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा।
0: हाँ,
1: क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा।
0: ओके, क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पीछे
1: और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या है।
0: जी जी,
1: व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा। अब देखो
0: जी जी, डिजायर डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं।
1: हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है
0: जी।
1: फेम, फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर,
0: पावर का डिजायर,
1: किसी पदवी का डिजायर। हाँ
0: जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, कहां पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना,
1: मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर
0: है, मतलब
1: आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी।
0: क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्स एबल, मतलब हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं।
1: बिल्कुल,
0: रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए। वेल मीना मैम, आपने वेदांता भी पढ़ा, आपने कई कॉर्पोरेट्स में काम भी किया, संगीत से भी जुड़ी रही, बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी।
1: हाँ जी।
0: लेकिन आप आज की दुनिया में हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से, और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर, या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं, इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का।
1: सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अगर मुझसे पूछे
0: जी,
1: कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो
0: जी।
1: पहला तो फायदा ये है। दूसरा, आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है, है ना, और उसका ही वाइसे वर्स भी पॉसिबल है।
0: बिल्कुल,
1: तो उससे बच के रहना है। ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना, तो समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना। पहले कहां ये स्टार मेकर या कुछ और था जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे, अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अंटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था।
0: right.
1: पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है वहां भी अच्छी बात है, और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है
0: जी।
1: लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका
0: जी।
1: इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है। सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें, फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता नहीं क्या।
0: करेक्ट।
1: तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है मुझे पूछे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: सामने इंसान बैठा है, आप उनसे बात करिए, ये क्या बात हुई उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है
0: जी,
1: माँ बाप बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं।
0: आपने बिल्कुल,
1: आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारने में देर नहीं लगेगी, बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है।
0: बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है, दोनों तरफ इसकी एजेस हैं, अगर हमने इसको गलत चलाया
1: जी
0: तो हम कट जाएंगे। सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको चलाना है। और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है बस वही पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए। चलिए
1: हावी नहीं हो जाए,
0: हावी ना हो जाए क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है
1: जी, जी।
0: तो इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए मीना मैम मुझे ये बताइए, बहुत बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्म की शुरू शुरू में भी आपने कहा था प्रैक्टिस करते हैं, हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं, फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कलह सब कुछ शुरू हो जाता है।
1: यस,
0: तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान अध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: अपनी चॉइस है ना
0: जी।
1: अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला, कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। चार पांच श्लोक आते थे वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गई, मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं
0: जी।
1: ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है, यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना?
0: ओके,
1: किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे। और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में, जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी सादी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ, दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: ओके,
1: हाँ
0: बिल्कुल ठीक।
1: अभी कोई दरवाजा खटखटाता है
0: जी,
1: कौन है पूछता है ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
1: तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ, थोड़ा सोचिए उसको। तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
0: ओके,
1: उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए, तो दैट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे, कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे, दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें। खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे,
0: जी
1: एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणानाम केवलम वचन द्वयम, कि 18 पुराणों में दो ही बातें कही गई हैं, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख न पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी उतना करें जिंदगी में तो आप स्पिरिचुअल हो।
0: सुंदर, अति सुंदर। चलिए सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं।
2: बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए।

0: अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए जैसा मीना मैम ने कहा मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूं, क्यों मैं अपने अंतर्मन में बड़ा दुखी इंसान हूं, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूं, उसको मार दूं, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा वगैरह वगैरह, लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूं ध्यान से और आध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो तो धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, मतलब हमें मेथड बताइए।
1: हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ
0: जी।
1: जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए
0: जी।
1: तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है उसको आप मन में लेके वापस आइए, जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है
0: जी,
1: तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय है ना, सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा
0: जी।
1: तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी

0: विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट. लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे डेढ़ घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है.
1: जी.
0: मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं. मैं इंटेंशनली नहीं गई थी लेकिन जाके कुछ पाके आई. तो ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं और फिर आप खुद ही चलने लगोगे कि नहीं नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए. और हमारे शास्त्र क्या है, एक आईने की तरह है, हमको दिखाते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं. किसी कथा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी बात की माध्यम से, उनमें जो भी लिखा है, तो वो सब सुनना अच्छी बात है. तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास.
1: सिंपल आसान तरीका है दोस्तों, अपनाने में कोई बुराई नहीं है. थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है. वक्त तो वही है 24 घंटे. हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीजों पर जाना है. नंबर वन ध्यान, नंबर टू कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए. बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई जरूरी नहीं है आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे. नंबर थ्री, कोई भी देवता है, कोई भी डेटी है जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है. बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं. तो ये चार पांच प्रैक्टिसेस हैं. मुझे ऐसा लगता है विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम 5 मिनट 10 मिनट मे बी हाफ एन आवर जितना भी हमको मन लगे करें तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे. बहुत सुंदर मैम. तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको सुना, आपसे बातें समझी हैं, अपनी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए. आपने पीछे कहा ना, आपकी नानी ने कहा था कि मनुष्य का एक जीवन मिला है, उसको ऐसे बेकार मत करो. तो क्या संदेश है आपका कि हम उसको बेकार कैसे ना करें? बस
0: अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है
1: जी
0: कि अपने आप के पास या अपनी आत्मा के पास फिर लौट जाने के लिए
1: जी
0: शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है.
1: वाओ.
0: एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः. यानी ये तीन चीजें दुर्लभ है लाइफ में. पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना. दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है. और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब समझाए कि हम कैसे पार लगाएं. और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलता है. तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं. दैट इज द मैसेज. और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है. लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपने सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है. और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा. वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास.
1: जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल.
0: तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए. दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीजें आपने हमें बताई हैं सिंपल तरीके से, कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई।
1: जी
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गली नंबर 9, जहां पपीज गॉसिप करते हैं, चिक्स फैशन शो करती हैं, और लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक छुट्टी पे होता है और हैप्पीनेस फुल ड्यूटी पर। सीन 1, शहर के कोने में एक सीक्रेट जगह। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो गूगल मैप्स पे नहीं मिलती, ना उसका एड्रेस क्लियर होता है, ना उसका लॉजिक, पर फिर भी कुछ लोग गलती से वहां पहुंच ही जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो थोड़े बदल जाते हैं। आज की कहानी है गली नंबर 9 की, एक पापा की बेचैनी। शाम का वक्त, ट्रैफिक, हॉर्न्स, नॉर्मल सिटी का क्योस। राजीव ऑफिस से घर लौट रहा है, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा स्ट्रेस्ड। दरवाजा खोलता है, आन्या बेटा मैं आ गया, कहाँ हो आप? और एकदम साइलेंस। वो मुस्कुराता है, छुप गई क्या, कहाँ गई मेरी आन्या? पर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, साइलेंस सेम रहता है। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। घर चेक करता है, बालकनी, बेडरूम, किचन, प्ले रूम, आन्या कहीं नहीं। अब वो सिर्फ फादर नहीं है, वो एक डर से भरा हुआ इंसान है। पैनिक हो जाता है, फोन कॉल्स, नेबर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, और सबका जवाब, आन्या को नहीं देखा। राजीव के दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे हैं, किडनैपिंग, एक्सीडेंट, और फिर एक अजीब सी इंट्यूशन उसे ले जाती है गली नंबर 9 की तरफ। जैसे ही वो गली में एंटर करता है, आवाजें धीरे हो जाती हैं, ट्रैफिक की नॉइज गायब, हवा थोड़ी सी हल्की लगती है, और एनवायरनमेंट थोड़ा सा अजीब बट पीसफुल। राजीव रुकता है, सोचता है, ये जगह पहले कभी नहीं देखी, नहीं, पर फिर भी जैसे ये जगह उसे जानती हो, पहचानती हो, और उससे बात कर रही हो। थोड़ा सा आगे बढ़ता है और राजीव फ्रीज हो जाता है। जमीन पर आन्या बैठी है और उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा पपी, बिल्कुल आन्या के ही साइज का। पर ये नॉर्मल सीन नहीं है, पपी नॉन स्टॉप भौंक रहा है एक्सप्रेसिव टोन में, और आन्या फुल कंसंट्रेशन के साथ बोल रही है, फिर उसने क्या बोला? राजीव का ब्रेन, ये तो इंटरव्यू चल रहा है। राजीव धीरे से पास आता है, आन्या, बेटा आन्या, पापा, इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, और पपी, भाव भाव, ट्रांसलेशन स्पॉइलर मत दो। राजीव, आई थिंक मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है। तभी आसमान बदलता है और बारिश शुरू। राजीव सोचता है, चलो अब घर, पर नहीं, गली नंबर 9 में स्टोरी अभी भी वार्म अप पे है। दूर से एक आदमी आता है और उसके पीछे 3 टाइनी चिक्स। पर ट्विस्ट क्या है जानते हैं?
सबने कलरफुल मिनी रेनकोट्स पहने हैं, रेड ब्लू येलो सब अलग कलर्स, जैसे रेनबो चला रहा हो चिक्स का। चिक्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक मोड ऑन में। राजीव मन में सोचता है, ये फैशन वीक है क्या? और वो आदमी चिक मॉनसून कलेक्शन 2026 लॉन्च करता हुआ। आन्या क्लैप करती है, पापा देखो कितने क्यूट हैं। और पपी जेलस, बाउ ट्रांसलेशन, मुझे भी आउटफिट चाहिए। रियलिटी ऑफिशियली ब्रेक होती है। राजीव खुद से, मैं सपना देख रहा हूं या ये सच्चाई है? आन्या, पापा रिलैक्स, यहां सब नॉर्मल है। और तब स्लो मोशन में एंट्री होती है एक टाइनी चीहुआ हुआ डॉगी की। नाम प्रिंसेस लोलो। सनग्लासेस, स्टाइलिश वॉक, पीछे दो लोग, कैमरा रेडी, रील शूटिंग चल रही है, म्यूजिक इमेजिनरी बज रहा है। लोलो पोज देती है, हेड टिल्ट, स्लो ब्लिंक, कैप्शन रेडी, रेन वाइब्स ओनली। और राजीव सोचता है, बस अब मैं गिव अप करता हूं। राजीव धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, एक बच्ची पपी के साथ बात कर रही है, चिक्स रेनकोट में खुश हैं और ची हुआ हुआ अपनी लाइफ जी रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, ना EMI, ना डेडलाइंस, ना SIP, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट। राजीव के दिमाग में एक थॉट आता है, मैं कब इतना सीरियस हो गया? मैं कब लास्ट बार बिना रीजन के हंसा था? मैंने कब सिर्फ रुक के कुछ फील किया? और उस मोमेंट में गली नंबर 9 से आंसर आता है। राजीव आन्या के पास बैठता है। आन्या बेटा, मैं भी सुन सकता हूँ पापी की स्टोरी? आन्या स्माइल करती है और बोलती है, ऑफ कोर्स पापा। पापी, बाउ ट्रांसलेशन, मेंबरशिप अप्रूव्ड। और उस मोमेंट में राजीव सिर्फ फादर नहीं रहता, वो फिर से एक बच्चा बन जाता है। बारिश रुकती है, लाइट्स नॉर्मल होती हैं। राजीव और आन्या घर की तरफ चल देते हैं। राजीव पीछे मुड़ के देखता है, गली नंबर 9 जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, गली नंबर 9 कोई जगह नहीं है, एक फीलिंग है, जहां आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, थोड़ा ड्रीम करते हो, थोड़ा इमेजिन करते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो और थोड़ा रियलाइज करते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितनी हम बना देते हैं। अगर आपको कभी गली नंबर 9 मिल जाए तो क्या आप रुकोगे या फिर जल्दी में इग्नोर कर दोगे? मैं हूं आपकी दोस्त, थोड़ा सा बचपन बचा के रखिए, थोड़ा पागलपन जिंदा रखिए, क्योंकि लाइफ का असली मजा वही है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: सिलेक्टिव मेमोरी वाला दोस्त, अपनी गलती कुछ याद नहीं, और आपकी गलती डेट, टाइम, लोकेशन, कपड़े सब याद, जैसे मेमोरी नहीं कोई हाईलाइट फीचर हो गया हो। What?

मॉर्गन मफल, सुबह का शैतान या स्लीपर लेजेंड। नमस्कार दोस्तों, आज का फनी वर्ड है थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा फनी और थोड़ा डेंजरस भी। मॉर्गन मफल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जर्मन विलन हो। मैं हूँ मॉर्गन मफल और मैं सुबह को बर्बाद करने आया हूँ। पर इसका असली मतलब बहुत सिंपल है, वो इंसान जो सुबह उठते ही दुनिया से थोड़ा नाराज होता है। मतलब अलार्म बजते ही, क्यों सनलाइट आते ही बंद करो ये ब्राइटनेस, और कोई गुड मॉर्निंग बोल दे तो जवाब मिलता है नॉट गुड। चलिए कहानी सुनते हैं। एक शहर था, नाम था नींद नगर। जी हाँ, नींद नगर। इस शहर में दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे मॉर्निंग लवर्स और दूसरे थे मॉर्गन मफल्स। मॉर्निंग लवर्स 5 बजे उठ जाते, योगा, वॉक, सनराइज सेल्फी, सूर्य नमस्कार। और मॉर्गन मफल्स, उनके लिए सुबह एक कॉन्स्पिरेसी थी। इस शहर में रहता था राघव, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन सर्टिफाइड मॉर्गन मफल। अलार्म बजता 5 मिनट और 5 मिनट के बाद और 5, और फिर ऑफिस के लिए लेट। राघव का एक ही रूल था, सुबह बिना कॉफी के मैं इंसान नहीं हूं। उसकी मम्मी, बेटा गुड मॉर्निंग, और राघव, कॉफी लो पहले। उसकी दोस्त नैना, तू इतना इरिटेटेड क्यों रहता है सुबह सुबह। राघव, मैं इरिटेटेड नहीं हूं, मैं मॉर्गन मफल हूं। एक दिन ऑफिस में एक चैलेंज अनाउंस होता है, अर्ली बर्ड वीक। जो 7 दिन तक सुबह 6 बजे ऑफिस आएगा उसे मिलेगा बोनस। राघव सोचता है ये तो इंसल्ट हो गई भाई, और नैना, ट्राई कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। राघव बोलता है, सुबह 6 बजे तो मेरी सोल भी ऑफलाइन होती है। नेक्स्ट डे अलार्म सुबह 5:30 बजे पे सेट। अलार्म बजता है, राघव आंख खोलता है और सीधा अलार्म बंद कर देता है। नाइस ट्राई। डे 2, उठने की कोशिश। डे 3, कॉफी गिर गई। डे 4, ऑफिस गया पर बिना बात किए। बॉस कहते हैं, गुड मॉर्निंग राघव, और राघव ओनली ग्लेज, सिर्फ घूरता है। डे 5, राघव सुबह उठ तो जाता है, बाहर भी जाता है और पहली बार सनराइज देखता है। लाइट धीरे धीरे फैल रही है, बर्ड्स की आवाज, हवा ठंडी, और राघव रुक जाता है। क्या ये रोज होता है? नैना हंसती है, हाँ बट तू तो सोता रहता है। उस मोमेंट में राघव को समझ आता है, सुबह प्रॉब्लम नहीं है, उसका कनेक्शन मिसिंग था। पर अगले दिन फिर अलार्म बजता है, राघव फिर से, बस 5 मिनट और। नैना कहती है, तू चेंज नहीं होगा। राघव बोलता है, मैं इंप्रूव तो हो रहा हूं, कंप्लीटली चेंज होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, हर इंसान का एक वर्जन होता है, कोई मॉर्निंग लवर, कोई नाइट आउल और कोई मॉर्गन मफल, और ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने वर्जन को समझकर उसे थोड़ा बेटर बना सके। तो अगर आप भी सुबह उठ के थोड़ा ग्रम्पी फील करते हो, अगर आपको भी पहले कॉफी चाहिए और फिर कॉन्वर्जेशन, तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो, आप हो मॉर्गन मफल्स की टीम का एक हिस्सा। आप कौन सा टाइप हो ये जरूर बताना मुझे, मॉर्निंग लवर, नाइट आउल या फुल ऑन मॉर्गन मफल। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी कॉफी स्ट्रॉन्ग है या वीक। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, सुबह चाहे जितनी ही मुश्किल हो, एक कप कॉफी और थोड़ी सी मुस्कान सब कुछ ठीक कर देती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: गुड मॉर्निंग विद फ्लावर इमोजी एंड अ सनराइज इमोजी। सुबह 6 बजे ही इतने फ्लावर्स भेज देते हैं लोग कि लगता है फोन में ही गार्डन उग गया। What?

सिलेनोफिल, वो चांद जो सिर्फ देखता नहीं महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड थोड़ा मुश्किल है पर फीलिंग बहुत सिंपल है। वर्ड है सिलेनोफिल, मतलब वो इंसान जो चांद से प्यार करता है। पर दोस्तों, क्या चांद से प्यार करना इतना सिंपल होता है या उसके पीछे कोई कहानी होती है? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ चांद को देखता नहीं चांद में जीता था। आरव, थोड़ा अजीब थोड़ा अलग। एक शहर था नॉर्मल सा, रश ट्रैफिक लोग बिजी, और उस शहर की एक बिल्डिंग की छत पर रोज रात को एक लड़का बैठता था, नाम था आरव। अब आरव थोड़ा अलग था, जहां लोग रात को रील्स देखते थे आरव आसमान को देखता था, जहां लोग गुड नाइट मैसेज भेजते थे आरव चांद को गुड नाइट करता था। हेलो चांद, आज तुम थोड़े ज्यादा ब्राइट लग रहे हो, कभी कभी थोड़ा साइड हो जाओ, स्टार्स को भी चांस दो। कॉलोनी के लोग कहते थे ये लड़का थोड़ा फिल्मी है, दोस्त बोलते थे भाई तू गर्लफ्रेंड बना ले, चांद से बात करने से तो बेटर है। आरव हंसता था, गर्लफ्रेंड ऑनलाइन होगी या नहीं पता नहीं, चांद तो रोज आता है। कनेक्शन डीपर था और हम सोच भी नहीं सकते, पर सच ये था आरव का चांद से कनेक्शन फन नहीं था, वो पर्सनल था। बचपन में उसकी माँ उसे सुलाते हुए कहती थी, आरव चांद देखा, वो सिर्फ एक गोला नहीं है, वो एक दोस्त है। जब भी तुम अकेला फील करो बस उसे याद कर लेना, उससे बात कर लेना। और फिर एक दिन माँ चली गई, तब से आरव के लिए चांद सिर्फ चांद नहीं रहा, वो एक कनेक्शन बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक रात आसमान बदल गया, गहरे बादल, कोई रोशनी नहीं, चांद गायब। आरव छत पर गया और रुक गया, चांद एकदम साइलेंस। फिर उसने देखा, उसने फिर देखा, फिर से और फिर से, पर कुछ नहीं। उस रात आरव को रियलाइज हुआ आदत भी कभी कभी जरूरत बन जाती है। तभी हल्की सी एक आवाज, तुम उसे ढूंढ रहे हो? आरव पलट के देखता है, एक लड़की खड़ी है, सिंपल वाइट ड्रेस, आंखों में एक अजीब सा काम। आरव पूछता है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मैं उसकी तरफ से आई हूं। आरव बोलता है, उसकी तरफ मतलब चांद की? लड़की कहती है, हाँ आज वो थोड़ा बिजी है। आरव कहता है, बिजी? चांद भी कभी बिजी होता है? लड़की बोलती है, अरे भाई इतने लोग उसे देखते हैं, थोड़ा वर्कलोड तो होगा ना। आरव हल्का सा हंसता है पर फिर सीरियस, पर वो आज दिख क्यों नहीं रहा? लड़की आसमान की तरफ देखती है, चांद हमेशा होता है, बस कभी कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, जैसे फीलिंग्स, जैसे

दे, जैसे वो लोग जो चले जाते हैं पर कहीं नहीं जाते। आरफ चुप हो जाता है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें लगता है सिलेनोफिल का मतलब सिर्फ चांद से प्यार करना है? आरफ बोलता है, शायद। लड़की, गलत। वो इंसान सिलेनोफिल होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देख लेता है, जो तन्हाई में भी कनेक्शन फील कर लेता है, जो ऊपर देखना नहीं भूलता और जो यादों को बोझ नहीं रोशनी बनाता है। आरव धीरे से बोलता है, मेरी माँ कहती थी। लड़की बीच में ही बोल देती है, वो सही कहती थी। आरव शॉक्ड, तुम्हें कैसे पता? लड़की बस मुस्कुराती है। हवा चलती है, आरव आंख झपकाता है और लड़की गायब। बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और फिर चांद वापस सुंदर, खूबसूरत, सफेद, आज थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। आरव स्माइल करता है, वो समझ गया, आज वो सिर्फ चांद को नहीं देख रहा, वो उसे फील कर रहा है। दोस्तों, सिलेनोफिल होना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक नजरिया है। जहां आप अंधेरे से डरते नहीं, उसमें रोशनी ढूंढते हो। जहां आप अकेला फील करते हो पर अकेले होते नहीं। जहां आप ऊपर देखना नहीं भूलते। आज रात जब आप आसमान देखें तो क्या आप सिर्फ चांद देखेंगे या उसमें किसी की याद, किसी की बात, किसी की मुस्कान और शायद थोड़ा सा खुद को भी। और अगली कहानी तक याद रखिए, चांद कभी गायब नहीं होता, बस कभी कभी हम देखना भूल जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पासवर्ड रीसेट करने वाला इंसान, हर बार लॉगिन करो रॉन्ग पासवर्ड, रीसेट करो, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। भाई मैं ही हूँ, मुझे ही एंट्री नहीं दे रहे।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज हाजिर होती हूं आप सभी के बीच में चर्चा का एक नया विषय लेकर। आज भी हाजिर हूं आप सभी के बीच में लेकर चर्चा का एक नया विषय। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं डॉक्टर SS गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के। तो आइए आज जानते हैं हम अपने चर्चा का विषय। आज है हमारे चर्चा का विषय एक बहुत ही नया और यूनिक सा मुंह के छाले, जिसके संबंध में हम सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो श्रोता, मुंह के छाले होते क्या है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर से सबसे पहले जानते हैं कि मुंह का छाला क्यों होता है, उसका कारण क्या है।
2: मुंह के छाले कई तरीके के होते हैं। ऐसे समझिए कि कई बार जो है ओठ के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है
1: जी,
2: या जबान के ऊपर एक छोटा सा छाला हो गया, ठीक है, तो वो भी एक छाला है ना
1: जी।
2: कभी कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, है ना, गुटखा या फिर इसको क्या बोलते हैं, सुपारी खाते हैं, उसकी वजह से एक छाला हो जाता है, वो भी एक छाला होता है। कभी कभी क्या है, खाना खाते समय या बात करते समय दांत के बीच में जवान आ जाती है या गाल आ जाता है या फिर ओठ आ जाता है तो कट जाता है, वो भी एक छाला हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है अक्कल दाढ़ आती है, अक्कल दाढ़ जो जिसको हम आखिरी दांत या विजडम टूथ बोलते हैं, वो उसके दोनों दांतों के बीच में भी उधर जो है चमड़ी काट जाती है, उसको भी हम छाला बोलते हैं। तो छाले कई तरीके के मुंह में होते हैं। कभी बीमारियों से भी छाले हो जाते हैं, मान लो कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शरीर में भी छाले पड़ते हैं तो मुंह में भी छाले हो जाते हैं, जैसे अभी अपना जो माता निकलती है ना उसमें भी छाले हो जाते हैं, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, मुंह में भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी जो है छाले अपने को जो है किसी भोजन की कमी, भोजन में जो तत्व होते हैं जिसको अपन मिनरल्स बोलते हैं, है ना, विटामिन्स बोलते हैं, उनकी कमी से भी मुंह में छाले

0: अधिकतर आप देखेंगे कि जो मेरे पास मरीज आते हैं वो यही आते हैं कि जरा सा उनको छाला हुआ, बोले सर देखना कहीं कैंसर तो नहीं है मुझे
1: जी।
0: वो कैंसर बोलते हैं क्या? कैंसर, हाँ। तो फिर हम लोग उसके एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद देखते हैं कि वो सादा छाला सिंपल है, कोई ऐसा खतरनाक छाला नहीं है। लेकिन मरीज डरे हुए रहते हैं क्योंकि आजकल देखा है कि अपने देश में और इवन पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा ओरल कैंसर हो रहा है, है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। लोगों को क्या है कि फूड हैबिट्स से जो है मुंह का कैंसर हो रहा है, फूड हैबिट्स जो है, जो एक तो वो प्लस ये अपना ये नशे वाली चीजें हैं, गुटखा है, सुपारी है, तम्बाकू है, मतलब बहुत खा रहे लोग, महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो इस वजह से जो होता है, इससे क्या होता है, मुंह कम खुलना, जैसे कुछ लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, इससे क्या होता है शुरुआत में मुंह कम खुलता है
1: जी,
0: ऐसा कम खुलता है और फिर वो कड़क हो जाती, चमड़ी कड़क हो जाती
1: जी।
0: फिर उसके बाद जो छाला बनता है वो कैंसर का रूप ले लेता है ना
1: जी। सर ये मुंह का कम खुलना कैसे पहचान सकते हैं?
0: ये क्या होता है कि जैसे मान लो शुरुआत में अपन देखेंगे जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी जिनको कोई आदत नहीं होती है उसकी जो गाल की जो चमड़ी है, ऊंट की चमड़ी है, वो मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है ना, जिसे अपन उसमें हवा मारेंगे मुंह के अंदर तो गाल फूल जाते हैं। लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं या इनका कम मुंह खुलता है उनके गाल नहीं फूलते हैं और उनकी चमड़ी जो गाल है वो कड़क हो जाता है, कड़क हो जाता है, अंदर से अपन अंगुली डाल के फील करेंगे तो कड़क हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सम्यूकस फाइब्रोसिस, या फिर बोलना चाहिए कि चमड़ी का पट्टिकाएं बनना, चमड़ी कड़क होना, ठीक है ऐसा। दूसरी चीज यह है अक्कल लाड़ की वजह से भी कम खुलता है, कभी कभी अक्कल लाड़ जब आती है, नई नई लाड़ एरप्ट होती है, बाहर निकलती है, तो उस समय उसके दांतों के चारों तरफ सूजन आ जाती है जिससे भी मुंह कम खुलना, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रहता है, 4-5 दिन के लिए दवाई गोली ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो सब सुपारी खाने से या गुटखा खाने से या तंबाकू खाने से जो मुंह कम खुलता है वो फिर वापस ठीक नहीं होता है, और ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मरीज को और ध्यान रखना पड़ता है, तंबाकू छोड़नी पड़ती है, बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ती है और अच्छी हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं, और डॉक्टर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं दवाई, तब जाके वो मुंह खुलता है
1: जी। सर आपने अभी मुंह का कैंसर का नाम लिया था, जो कि मुंह के छाले बनते हैं उसके बाद में मुंह का कैंसर हो जाता है, तो कैसे छालों को कैंसर समझा जा सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है और खुद भी महसूस किया है कि कभी कुछ खट्टा खा लिए, खट्टा खा लिए तो मुंह में छाले की तरह आ गया, या फिर कभी कुछ गर्म खा लिए जिससे जल गया जुबान तो उसपे कभी कभी छाले आ जाते हैं, तो क्या उसे भी हम मुंह का कैंसर समझ सकते हैं?
0: नहीं, जो किसी के जैसे मान लो कोई लिक्विड या कोई खाना, गर्म खाना खाने से या गर्म दूध पीने से या चाय पीने से जो जल जाते हैं वो कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है, वो सिंपल छाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी जो मैंने बताया नींद पूरी नहीं होती है या ट्रैवलिंग करते हैं या कब्जियत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो भी सिंपल छाला है, वो 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, विटामिन्स वगैरह लेते हैं और अच्छा पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है, या छोटा मोटा कोई दवाई ट्यूब आता है ऑइंटमेंट वो लगाने का, छाले की दवाई, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो कैंसर का जो छाला होता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब वो घाव भर नहीं रहा है, ठीक है, और वो कम से कम शुरुआत में उसके मुख्य कारण तो यही होते हैं कि तंबाकू खाना, ठीक है, या फिर किसी का इतिहास ऐसा है कि वो 10 साल से तंबाकू खा रहा है या 10 साल से बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या सुपारी खा रहा है
1: जी।
0: या उसके मुंह में कोई ऐसी कोई नुकीली चीज है, जैसे कुछ लोग नकली दांत लगाते हैं, नकली जो नुकीला होता है उससे भी रगड़ खा खा के छाला हो जाता है, या फिर वो मैल बहुत ज्यादा जमा हुआ है,
1: गंदगी
0: उससे वो नुकीलापन आ जाता है तो उससे भी एक छाला हो जाता है, तो वो भी कैंसर हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोई भी जो मरीज है वो आके जो दंत चिकित्सक को नजदीक जहाँ पे भी वो है डॉक्टर, उनको दिखाना चाहिए, वो दंत चिकित्सक ही उसको समझ पाता है या उसको देख पाता है कि ये नॉर्मल छाला है, सामान्य छाला है या फिर वो कैंसर है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है
1: जी। सर मुंह के कैंसर का कारण क्या क्या हो सकता है?
0: मुंह के कैंसर का मुख्य कारण तो मैं आपको बताऊं कि यही है कि या तो विटामिन्स की कमी होना
1: जी,
0: ठीक है, या कोई दारू पीता है या अल्कोहल लेता है, ठीक है कि नहीं, उसकी वजह से भी उसको मुंह का छाला और कैंसर हो सकता है। बीड़ी सिगरेट या किसी भी रूप में तंबाकू खाना, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या नॉन स्मोकिंग, मतलब बीड़ी पीता हो या फिर खाने की जो तंबाकू आती है, खैनी, गुटखा, चूरा, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ाखू है ना, नाश का, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग।

0: है ना, बहुत सारी फॉर्म में तंबाकू अवेलेबल है, तो उससे वो मुख्य कारण तो तंबाकू है उसका, कैंसर का, ठीक है। और सुपारी खाने से भी होते हैं कैंसर, है ना
1: जी।
0: और आपका जो है ये विटामिन जो रहती है मेन, उनसे भी है ना, या फिर कोई नुकीला जो ऑब्जेक्ट है, कोई नुकीला दांत या कोई नुकीला जड़ पड़ी हुई है दांत की, हाँ। है ना, वो रगड़ खा रही है जवान को बार बार, है ना,
1: हाँ।
0: कोई नुकीला दांत है, या फिर कोई नकली दांत में रखा जो रगड़ खा रहा है,
1: हाँ।
0: है ना, तो उससे भी कैंसर होता है
1: जी। सर सर आपने बताया कुछ सामान्य छाले होते हैं और कुछ छाले मुंह के कैंसर बन जाते हैं, तो इसे पहचाना कैसे जा सकता है? अगर दो दिन, चार दिन या फिर एक सप्ताह तक जो ठीक हो जाए तो कितने दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए?
0: 5-6 दिन, 7 दिन तक देखना चाहिए। यदि कोई छाला है और वो ठीक नहीं हो रहा है, यदि हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, यदि नहीं ठीक होता है, छाला बना ही हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हो सकता है वो कैंसर का रूप ले रहा हो या कैंसर होने वाला है ना,
1: हाँ।
0: तो वो डॉक्टर ही पहचान के उसको बता सकता है, उसके हम लोग जाँच कराते हैं, ठीक है। कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो मांस काट के भेजना पड़ता है, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वो लैब में भेजना पड़ता है, ठीक है, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है, उसको एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को
1: जी। सर सर ये छाले होने से बच कैसे सकते हैं?
0: छाले होने से ये मैंने आपको बताया कि ये सब बुरी आदतें हैं जो,
1: हाँ।
0: इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए किसी भी इंसान को, जो है ये नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, कि नशा जो है वो परिवार का भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है, देश का भी नाश करता है, क्योंकि उससे कुछ फायदा कुछ नहीं होता है
1: जी।
0: उससे ना आपको बहुत सारी कमजोरियां आ जाती है उससे, आपको नशा करने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका कैटरेक्ट है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है ना, दांत खराब होते हैं, दांत की मुंह की चमड़ी खराब होती है, ये बहुत सारी बीमारियां जो है तंबाकू खाने से या नशा करने से होता है
1: जी। और सर मुंह के कैंसर से बचाव क्या क्या हो सकता है, बचाव कैसे कर सकते हैं मुंह के कैंसर का?
0: मुंह के कैंसर के बचाव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे मान लो आपको बताया कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए,
1: हाँ।
0: है ना, सुपारी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कोई दांत नुकीला है मुंह के अंदर तो उसको डॉक्टर के पास जाके निकलवा देना चाहिए या उसको घिसवा लेना चाहिए जिससे स्मूथ हो जाए,
1: हाँ।
0: ना, कोई नकली दांत व्यक्ति पहनता है तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनको डिग्री नहीं होती उनके पास, है ना, सीख जाते हैं कहीं से,
1: हाँ।
0: भी, और वो गलत तरीके से दांत लगा देते हैं, और वो गलत तरीके के जो दांत होते हैं वो उनको चुभते रहते हैं,
1: हाँ।
0: मसूड़े में या चमड़ी में, तो वो यदि लगा रखा है तो डॉक्टर पास जाकर उसको निकलवाना चाहिए। जो जो सही जो ग्रेजुएट डॉक्टर है, जो BDS, हाँ। है, जो सही सरकारी डॉक्टर है, या फिर मतलब उसको ये बोलना चाहिए रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना, जो अनपढ़ जो होते हैं ना, जो इनको हम लोग बोलते हैं कि दुकान खोल लेते हैं कहीं भी,
1: झोला छाप
0: डॉक्टर, उनसे दूर रहना चाहिए
1: जी। होता क्या कई बार हमारे जो रोगी हैं वो लोग सोचते हैं कम पैसे में इलाज हो जा रहा है तो वहाँ पे चले जाते हैं और जाके ट्रीटमेंट करा लिया करते हैं, तो उनसे उनको बचना चाहिए। और सर साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने मुंह के कैंसर का कारण भी बताया, बचाव भी बताया, लेकिन हम उसका आपसे कुछ आसान शब्दों में उपचार जानना चाहेंगे।
0: उपचार ये है कि शासन की कई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत सब फ्री होता है इलाज, है ना। यदि किसी को मान लो कोई कैंसर हो गया है ना, तो उसी के अपने गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, हर स्टेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ भेज देते हैं, उनका फ्री में निःशुल्क इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लगता उनका ऐसा, हाँ। और छोटा मोटा कोई छाला है तो उसके लिए हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं
1: जी। यदि किसी को कैंसर हो जाए या फिर छाले गंभीर रूप ले लें, किसी को कैंसर के लक्षण दिखाई दे, तो वो सबसे पहले अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहाँ पे अपना उपचार कराएं और फिर जैसा होता है वो डॉक्टर की सलाह लें,
0: हाँ, हाँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका
0: जी, थैंक यू
1: सर। लास्ट में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित एक और प्यारा संदेश दें ताकि वो इसे सुने, समझें और अपने निजी जीवन में उसका उपयोग करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी समझा सकें।
0: मेरा झाबुआवासी जिले के जो भी हैं नागरिकगण, उनसे मेरा यही संदेश है कि नशे से बहुत दूर रहें, क्योंकि अपना झाबुआ जिला जो है वो मैंने देखा है कि यहाँ पे दारू जो अल्कोहल है वो भी बहुत यूज होता है, तंबाकू भी बहुत यूज करते हैं, महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं, तो मेरा तो ये संदेश है कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, हैं और आपका जो है ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में शुगर और बीपी हो गया है, जो किसान लोग हैं उनमें भी हो गया है। मजदूर वर्ग ज्यादातर तंबाकू खाता है, तो मेरा उनसे यही सलाह है, ये संदेश है कि बिल्कुल भी तंबाकू नहीं खाएं, क्योंकि तंबाकू में जो पैसा खर्चा होता है जो वो परिवार को चलाने के लिए उपयोग करें। मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था, यदि एक व्यक्ति मान लो दिन में 2 सिगरेट पीता है या 4 सिगरेट पीता है उसका, या 10 सिगरेट पीता है उसका, एक साल भर का यदि आप खर्चा निकालेंगे तो 1000 रुपए में जाता है, जो कि परिवार का भी नुकसान होता है, बच्चों में पढ़ने में पैसा लगाएं उसको, और स्वास्थ्य तो खराब होते ही है, यदि स्वास्थ्य अपना खराब है तो काम भी नहीं कर पाएंगे, मन भी अच्छा नहीं रहेगा, परिवार को भी नहीं चला पाएंगे, परिवार में लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं यदि अपन नशे से दूर रहें। तो मेरा यही संदेश है कि नशा बिल्कुल नहीं करें, और हो सके तो वो दूसरे जो छोड़ दिए हैं, वो जो तंबाकू खा रहे हैं है ना, और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारे पास एक टोबैको सेसेशन सेंटर है, तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है जिला चिकित्सालय, वहाँ के तंबाकू छोड़ सकते हैं, और यदि वो छोड़ देते हैं और लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई तंबाकू छोड़ें, ऐसा ये मेरा संदेश है।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए इतना अधिक समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां दी मुंह के छालों को लेकर, जिससे वो गंभीर बीमारी कैंसर से बच सकते हैं, किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, इसके बारे में आपने संपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए हमारे रेडियो टंक्या भील 90.8 FM छावो की आवाज की ओर से, और साथ ही जो श्रोता सुन रहे होंगे उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हम झोली। सबसे अच्छी

0: तरीकी, इसकी तो हवा ही निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतों उठो।

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: एकता और ऐश्वर्या।
2: कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो। है
3: भैया,
2: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
3: नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे।
2: नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इन्हें इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
3: ये ऋचा के बाग के फूल हैं।
2: ऋचा के बाग के
4: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
2: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
4: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
2: अच्छा।
4: थे।
2: अच्छा,
4: आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
2: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
4: ये कौन है भैया?
2: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
5: ए ए
2: ए,
5: ए,
2: ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
4: ए से एड़ी।
2: हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई।
4: ए से एकता,
2: ए से एक टक। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
4: क्यों?
2: बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
5: एकांत,
2: एकांत। शाबाश, ए से एकांत,
4: एकांत।
2: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
6: माली काका, आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे?
2: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
4: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
2: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ, ए से
5: एकदम,
2: ए से
5: एकदम,
2: एकदम। शाबाश। तो गुस्से में ऐठ गए माली काका। ऐसे
4: ऐठ कर।
2: हाँ शाबाश
4: भैया,
3: ऐसे ऐसा
4: भैया, ऐसे ऐसे।
2: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
7: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं, मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
4: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
2: हाँ बहुत बुरी बात है।
4: मालिक तो दुखी होते होंगे।
2: बिल्कुल होते थे बच्चों।
4: मेहनत ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
4: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
2: फूल नहीं तोड़ता, फूल
4: फूल।
2: शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया?
5: बताता हूँ। जल्दी।
2: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया।
5: क्या भैया?
2: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
5: भैया
2: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
4: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
2: हाँ टिकट लगा दिया।
4: की तो कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई हो गई। शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ ऐसे
5: ऐश्वर्या
2: ऐनक
4: ऐसा
2: और ऐसे ऐलान ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
5: अब लोग टिकट लेने लगे।
2: बिल्कुल सही।
4: माली काका को भी कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
4: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
2: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश।
4: अब खुश रहते हैं।
2: अब खुश रहते हैं
4: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
2: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
4: खुश हो गए।
8: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
2: चिड़िया आने लग गई।
4: टूरिस्ट आने लग गए।
8: और उनकी फोटो बाहर छप गई।
2: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
9: ए ए

में बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, आओ बैठो, चलो अपने पर बैठो।
3: बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ, तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: अरे वाह भाई वाह। अच्छा बच्चों, पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तुतुन।
2: क्या नाम था?
5: तुतुन।
3: तुतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने।
2: अच्छा?
4: का मैं।
2: अच्छा?
4: तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तुतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तुतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तुतुन की मम्मी ने तुतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तुतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है, 5:30 बजे छूट जाएगी, कहाँ हो तुतुन?

0: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
1: क्या होता है? हाँ
0: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 मिनट। क्या?
2: 5:30 मिनट।
0: शाबाश,
1: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तुतन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
3: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए।
1: पर अब क्या हो सकता था, तुतुन को तो जाना था। तो तुतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तुतुन के पापा बोले,
4: अरे भाई तुतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
1: और सुनो आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तुतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
5: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
1: तो बच्चों बताओ, क्या तुतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
6: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 बजे निकलनी थी ना।
7: अभी 5:15 ही तो बजे थे।
0: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
2: 5:30।
0: शाबाश।
1: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
2: 5:15।
1: बिल्कुल सही,
0: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों, तुतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
1: और तब तुतुन के पापा ने तुतुन को बताया,
4: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 मिनट बाकी हैं। ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
6: अब तो तुतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा,
8: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
0: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
1: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
8: अरे ये कैसे हुआ?
0: यही पूछने तो तुतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
4: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
6: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
4: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30। असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
4: सर देखिए, रेलवे में 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17:30।
0: क्या मतलब?
2: 17:30।
0: शाबाश,
6: 17:30। काफी अजीब सा लग रहा है।
1: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17:30 सुनकर ना अजीब लग रहा था।
6: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
1: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
0: हाँ 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह दोपहर शाम रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे 9:00 बजे
1: और 9:00 बजे,
0: 5:00 बजे
1: और शाम के
2: 5:00 बजे।
0: शाबाश। अच्छा 11:00 बजे
2: और शाम के 11:00 बजे।
0: शाम के 11:00 बजे नहीं बेटा, रात के 11:00 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
6: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना।
8: तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
0: हाँ बच्चों बहुत मजा आया था, लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
1: हाँ और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
0: क्या कहते हैं? यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
8: 4 बजे हैं।
0: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
6: शाम के 4 बजे हैं।
0: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताले।
1: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
0: बताओ बताओ।
6: 12, 13, 14, 15, 16
1: बताओ।
6: 16 बजे हैं।
0: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ, तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
6: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
7: घंटे।
0: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
1: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
7: 18 घंटे 30 मिनट।
0: वेरी गुड।
1: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
6: 19 घंटे।
0: अरे वाह शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद,

0: Boka Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटे।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी है। कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती हैं। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा।

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: खोलो उसमें निकला बम्बे को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: एक दिन का

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर

0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
1: भाई साहब
2: जी, मुझसे कुछ कहा?
1: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
2: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
1: जी,
2: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
3: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
4: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।

0: उषा जी।
1: जी सर।
0: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
0: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
0: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
0: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
0: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी।
0: और क्या?
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
0: पर क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए, आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है जी। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब,
5: क्या फाइलेरिया की
2: बचा जा सकता
5: है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इस रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
3: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। કિસાન સાથીઓ, આપ સુન રહે હૈ રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM છાબવા કી આવાઝ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी ने खेती की तैयारियां कर ली है। बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में बुवाई तक कर चुके हैं और काफी किसान अभी बाजारों में बीजों की दुकानों पर बीजों को खरीदते हुए और अन्य जुताई के सामानों को खरीदते हुए अलग अलग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आप सभी के लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियों को अब तक पहुंचाता रहा है और आज भी हम खेती से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। अभी आपने सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।
1: किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसानों ने शिरकत की। इस मेले के जरिए उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई गई हैं। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए दिखाते हैं आपको।

0: कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हर साल की तरह इस साल भी कई फसलों और फलों की विकसित नई किस्मों की जानकारी दी गई। किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसानों को नवीन जानकारी तो दी ही गई, साथ ही उन्नत किस्मों के बीज भी दिए गए, जिससे किसान कम समय व कम स्थान में अधिक पैदावार ले सकें। इसलिए इस बार मेले का विषय आत्मनिर्भर किसान रखा गया। मेले में देश भर के किसान शामिल हुए और कोविड को देखते हुए मेले में समुचित व्यवस्था भी की गई।
1: मैं विगत 30-35 वर्षों से LLB करने के बाद 1-2 साल मैं कचहरी गया, उसके बाद मैं मेरा मन कचहरी नहीं लगा, मैं खेती में लौट आया और खेती में मैं कुछ नए किस्म की बीज जो है डेवलप किया हूँ, जो कि हमारी वैरायटी जो है भारत सरकार में रजिस्टर्ड हो गई है UFR में, और वह वैरायटी उसके साथ साथ जो है भारत सरकार की द्वारा जो अधिसूचित प्रजातियाँ हैं उसको मैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके, इसमें हमारे पास 3-3 प्रोसेसिंग प्लांट है सीड का और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है आयल का, तो मैं लगभग 50-60 आदमी को जो है अपने गाँव में रोजगार दिया हूँ और सामाजिक दायित्व भी निभाता हूँ, जैसे कोरोना काल में काफ़ी लोगों को राशन देना, चावल दाल बांटना, कंबल बांटना, और मैं अपने गांव के विद्यालय को जो है गोद लेकर के उसको काफ़ी अच्छा हम लोग रिनोवेट किए हैं, जिससे बच्चे जाके पढ़ के उसमें बहुत ही जो है अपने को गुड फील कर रहे हैं। इस तरह से किसान को संपन्न होना चाहिए। मेरा शुरू से एक कंसेप्ट था कि किसान खेती के साथ साथ जब तक जो है उद्यमी नहीं बनेगा तब तक वह सफल नहीं हो सकता। सरकार खेती बढ़ावा दे रही है, आज हमारे पास इतना गेहूं धान उत्पादन हो जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए किसान को अपने उत्पाद को एक उद्योग में बदलना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि वो भी आम खेती में बहुत बड़ा सेक्टर है, कम पैसे में बिना पूंजी के आप खेती में खड़ा हो सकते हैं, और जगह आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान महंगी मिलेगी, लेकिन आप खेती में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे कई साथी जो है थोड़े में शुरुआत करके आज जो है कई करोड़ का ट्रांसफर कर रहे हैं, 2-3 करोड़ का ट्रांसफर हमारा भी साल का है। और इस तरह से मैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेला में जाइए, वैज्ञानिकों के पास जाइए, उनसे सीखिए, प्रगतिशील किसानों के साथ जाइए और फिर उसमें अपना एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए।
2: खेती इतना साइंटिफिक चीज है और इसमें इतना पैसा है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारा अगर उदाहरण ले तो मैं कभी खेत पर नहीं गया था, 10 साल का हॉस्टल में गया था सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले गए, रिटायरमेंट के थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले गए, खेती में आए तो काम शुरू किया, उसमें 2-4 साल तो लग गया, लेकिन अगर आत्मा से और मेहनत से काम किया तो आज हम करोड़ों रुपए की गाजर बेचते हैं और कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इस खेती से ही हुआ है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप इस खेती के अंदर आइए और इसको एक उद्योग की तरह समझ के और इसको एक इज्जत का धंधा समझ के तब उसमें काम करें, तो आपको इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। किसान खुद सक्षम है और उसको कोई भी मदद मिल जाए वो ठीक है, लेकिन वो अपने दम पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि शुरू के 10 साल में मेरे ख्याल में हमने कोई सरकार से मदद नहीं लिया था, और जब मदद की जरूरत पड़ी तो सब्सिडी भी मिली, बैंक से लोन भी मिला, पूसा इंस्टीट्यूट जैसे जैसे हमें बीज का, खाद का, रखने का, काम करने का, खेती करने का बहुत बड़ा योगदान मिला। कोई भी युवा अगर इस काम को कोई भी नई चीज करना चाहेगा तो सरकार और ये पूसा इंस्टीट्यूट, ICR जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ही मददगार साबित होते हैं।
3: किसान साथियों, आइए सुनते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए किसान भाइयों ने किस

0: अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की खेती करके लाभ लिया है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: किसानों से संपर्क के दौरान नवापाड़ा के कुछ किसानों ने मछली पालन को लेकर हमसे कुछ जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आग्रह किया था, तो आइए सुनते हैं विपिन कैसे मछली पालन करते हैं और कैसे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं।
2: विपिन कुमार है, मैं गांव बुटाने के रहने वाला हूं। अब मैं अपने फादर साहब श्री सुल्तान सिंह के साथ मछली व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग कराते हैं, युवाओं की ट्रेनिंग कराते हैं जो जिसमें फिश ब्रीडिंग से लेके फिश प्रोडक्शन तक बताते हैं कैसे करना है। कोई भी नया किसान उसके साथ जुड़ना चाहे उसको हम पूरा ट्रेन करते हैं। फिर हमने एक नई RS टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें कम पानी में कम जगह में ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। जो हम बाहर 30 एकड़ में मछली पैदा करते थे वो मात्र 1200 गज में पैदा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है पर उसमें हमें काफ़ी फायदा पहुंचता है। और जैसे कि जो चीज जिस फार्मर के पास कम लैंड है वो उस व्यवसाय को अपना सकता है और उससे काफ़ी लाभ कर सकता है। यूथ के लिए यही फायदा है कि वो जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपनी जो नॉलेज स्किल्स है उसको बढ़ाएं और अपने आप को रोजगार की तरफ लगाएं। और जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई उसके तहत जॉब गिवर बने ना कि जॉब टेकर बने।
0: किसान भाइयों, अभी आपने विपिन जी से सुना कैसे उन्होंने मछलियों का पालन करके अच्छे से लाभ कमाया और साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया युवाओं के लिए। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से भीली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: किसान मेले किसानों को कृषि की राह में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। ये मेला उन किसानों का भी पथ प्रदर्शन करता है जो कृषि के क्षेत्र में नए हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोधों और किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है।
1: गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा।
2: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब शाम 6 बजे।
3: किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं मछली पालन के ऊपर। मछली पालन करके हम कैसे अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: आइए किस तरह से कर सकते हैं मछली पालन बेहतर तरीके से जानते हैं।

शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू,

0: कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियां अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलग्नियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है, इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: किसान साथियों, अभी आपने मछली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक को और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से बिली गीत को।

0: पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका मुहपका यानी FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए।
1: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: से लाभ के लिए कुछ किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक खाद क्षणिक लाभ देती है और इसके लगातार इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, वो भी आधुनिक बदलाव के साथ, जिससे लागत में कमी और मुनाफे में इजाफा किया जा सके। हरियाणा करनाल के किसान जगत राम ने भी अपने खेतों में कुछ ऐसी ही अभिनव प्रयोग किए। उनके खुद के बनाए मॉडल में जगत राम जी एक एकड़ खेत से करीब 40 से 50 हजार की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें देसी बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वे भी सामान्य खेती किया करते थे, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। फिर किसी महानुभाव के एक वीडियो ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और वे पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ गए। आज वे अपने खेतों में तीन तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देसी गाय के गोबर से बनी खाद, 6 से 8 तरह की हरी खाद, फसल अवशेषों से बनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। वे रबी में करीब 40 फसलें व खरीफ में करीब 40 फसलें लेते हैं। इसके लिए वे अंतर फसल विधि का प्रयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसलें आपस में प्रतिस्पर्धा ना करके एक दूसरे के बढ़वार में सहयोग करें। इसके लिए किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए, जगत राम जी इसका खास ख्याल रखते हैं।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आइए सुनते हैं सफल किसान की दास्तां। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और किसान एक सफल किसान की कहानी हमें प्रेरणा देती है। इस कहानी से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से जैसे मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी, उंगलियों पे मेरे पूरी 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे दो दो तीन तीन बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में भी मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया है।
1: वे मानते हैं कि किसान को इस तरह से खेती करनी चाहिए कि उन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़े, इसलिए वे अपने खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मौसमी सब्जी फसलें, मसाला फसलें, औषधीय फसलें, लगभग हर तरह के फल की खेती करते हैं। इन

0: किसानों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलती रहे, इसके लिए जगत राम जी ने 14 देसी गाय पाल रखी हैं। गाय के दूध को बेचकर वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा रहे हैं।
1: सबसे पहले आप छोटा एरिया से, आप अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना, तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो, अनाज दाल तेल सब्जी फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते करते करते करते आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर को जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग, और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया। और ये बहुत जबरदस्त इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई कोई उद्योग नहीं है।
0: जगत राम जी का खेती मॉडल उन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है जिनके पास थोड़ी भूमि है। इसके साथ ही किसान चाहे तो बाजार की नब्ज को समझकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें वे जैविक रूप से तैयार फसलों का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो खेती में अपार संभावनाएं हैं जो तरक्की की ओर ले जा सकती हैं।
2: किसान साथियों, अभी आपने एक सफल किसान की दास्तां को सुना, आइए मिलवाते हैं एक और कि सफल किसान से और सुनते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
3: सिक्स मंथ पहले मैंने ये अपना कड़कनाथ फार्मिंग स्टार्ट की है, जो कि ये आपको बताना चाहूँगा कि कड़कनाथ जो है आपका मध्य प्रदेश झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का ये बर्ड है। तो वहाँ से हम इस बर्ड को जब हमने वहाँ पे एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो एमपी कड़कनाथ को जो इस प्रमोट करने के लिए बनी हुई है उस पर हमने कॉल किया और वहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने बोला कि आप आ जाइए वहाँ पे, मैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे कुछ 2-3 दिन जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ली, इसके बारे में जाना और यहाँ पर मैंने फिर जो है आपका स्टार्ट किया फार्म आके यहाँ पे। और हमने क्या किया है कि हमारा आशीष कड़कनाथ मुर्गी पालन है मध्य प्रदेश झाबुआ का, जो कि नंबर 1 अवार्डेड है मध्य प्रदेश में, और इसके शाखा हमने गाज़ियाबाद में स्टार्ट की है। गाज़ियाबाद में स्टार्ट करने के बाद हमारा इसका शाखा का उद्देश्य है कि पूरे देश में हमें चिक्स की और जो ये बर्ड्स हैं इसकी सप्लाई के लिए, तो हमें बड़ी समस्या आती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो हमने अभी एक तरीके का दिल्ली गाज़ियाबाद में कैरियर बनाया है, जैसे कि वहाँ से माल पहले यहाँ आ जाता है और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम चिक्स जो छोटा चिक्स 1 डे ओल्ड 15 डेज ओल्ड 30 डेज ओल्ड फुल साइज मुर्गा अगर चाहिए तो वो सब हम यहाँ पे करते हैं। हम लोगों उन लोगों को पूरा ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उनको क्या वैक्सीनेशन होती है पूरे और किस तरह से पाला जाए, एक मुर्गी के लिए और 1,000 बर्ड्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो सारा हम ट्रेनिंग में उन लोगों को बताते हैं, इनका खाना सारा चीज़ें। देखिए, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ किसी नए फार्मर के लिए कि स्टार्टिंग में अगर जैसे आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जगह नहीं है तो आप किसी बने बनाए फार्म को अगर आप रेंट पे स्टार्टिंग में करें, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा फार्म में पैसा ना लगाएं और धीरे धीरे अगर आप उस फार्म का, जैसे कि इसके हिसाब होता है कि एक बर्ड के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, तो अगर आप उसी हिसाब से आपने अपनी बजट के अनुसार बर्ड्स लाइए, जिससे कि आपका जो अगर आप रेंट पे अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में कोई फार्म, तो उसमें आपका लो इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग किसान इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं कि एक साथ 5 लाख रुपये कहाँ से लगाएं, क्योंकि 5 लाख रुपये की कॉस्ट सिर्फ आपके सेट बनाने में ही आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आप इनिशियली स्टार्टिंग करके आप कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देखरेख का सवाल है, इसका देखरेख बहुत ही आसान है, इसमें आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि इनको इनका जो ड्रिंकर है और इनका जो फीडर है, इन्हें एक बार आप दिन में फुल कर दीजिए, उसके बाद ये मुर्गा इस तरह का है कि ये पूरे दिन में अपने हिसाब से खाता रहेगा और अपने हिसाब से घूमता फिरता रहता है, ना तो ये जबरदस्ती खाएगा और ना ये किसी प्रकार का वेस्ट करेगा। तो अभी क्या है कि ये खाएगा और घूमेगा। सुबह इसमें क्या होता है, फीड्स में आप जो खिलाने की है, जैसे खिलाने के लिए, इसके लिए आप बाहर से, जैसे कि लो कॉस्ट में, जैसे कि आप मंडी वगैरह से या कुछ हरा चारा इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। इसकी एक स्पेशल फीड भी बनती है, जैसे कि आप 50% मक्का ले लीजिए और उसके अंदर फिर गेहूँ लगा लीजिए 10%, उस तरह से फिर आप इसमें 5% सोयाबीन डाल लीजिए, 5% आप इसके अंदर मछली का जो एक चूरा आता है वो डाल लीजिए, राइस ब्रॉन आता है वो डाल लीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से 5-6 आइटम्स का मिला के हम इसका फीड बनाते हैं। जब भी स्टार्ट करें तो ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट किया जाए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से आप जाकर ले सकते हैं और हमारे फार्म पे भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपको जो जोखिम से बचने में हेल्प मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं समझता कि कोई जोखिम है और बहुत ही मुनाफे वाला है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि दुगने तिगने पैसे होते हैं, क्योंकि कड़कनाथ एक ऐसा है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इसकी चाहत है अभी इस समय, क्योंकि कम फार्मर हैं और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है किसानों के पास। और हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें और इसको हम एक एक्सपोर्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, जिससे कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले समय में हम इसको, जो हमारा फ्यूचर है वो देख के चल रहे हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि हम अगर जैसे आपसे किसान से हम बात करते हैं कि आप हमसे एक बात पूछते हो कि हम इसे पाल तो लें, बना तो लें, लेकिन ये बेचेंगे कहाँ। तो इसी लेवल पे अभी गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है, इसकी अवेयरनेस पूरे अभी एग्जीबिशन के जरिए और न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे धीरे धीरे इसमें बहुत ही ग्रोथ अच्छी मिल रही है। मैंने खुद 6 महीने के अंदर अंदर अभी तक करीब 5 मैंने फार्म नए फार्मरों के स्टार्ट कर चुका हूं और उनका बहुत अच्छी तरह से फार्म चल रहा है, जिसमें कि उनको मैं समय समय पे बताता रहता हूं कि क्या वैक्सीनेशन है। यही नहीं कि हमने बच्चा दे दिया उसके बाद भूल गए, हम उनको डे टू डे उनके टच में रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करते हैं। युवा होने के नाते मैं आने वाली पीढ़ी को जो अभी चल रही है उनको ये सलाह दूंगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको थोड़ा डेडिकेटिवली करें। जो भी, चाहे आप कोई भी फील्ड में आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुर्गी पालन कीजिए, कोई भी फील्ड में आप आए लेकिन उसको मन से करो, अपना समझ के करो।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत को जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बनाया है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर प्रसाद जी की, जिनकी यात्रा उपलब्धियों और समर्पण से भरी रही है। डॉक्टर नूपुर जी न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि उनके कार्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। वे नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर रही हैं, उन्हें एशिया रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और खासतौर से कोविड काल में उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए उन्हें नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ और साथ ही चिकित्सा एवं सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें सत्य स्त्री सम्मान से भी नवाजा गया है। और साथ ही ग्रामीण राजस्थान से लेकर बड़े चिकित्सा संस्थानों तक SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन को स्वास्थ्य और आशा की नई दिशा दी है। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी यात्रा को जो चिकित्सा सेवा संघर्ष और संवेदना से होकर गुजरती है और जानेंगे डॉक्टर नूपुर जी के विचार और जीवन की प्रेरणा है। डॉक्टर नूपुर जी, रेडियो SN के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके।
1: तो चलिए नूपुर जी शुरुआत करते हैं और स्वागत हम आपका एक बार पुनः करें और शुरुआत फिर ऐसे करते हैं, शुरुआत से ही कर लेते हैं, कुछ आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपके उदयपुर की यादों से शुरुआत करते हैं, किस तरह से जीवन यात्रा शुरू हुई, शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए हमें।
2: देखिए, शुरुआती जीवन बहुत ही सामान्य सा रहा है पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक बहुत ही खुशनुमा और धार्मिक परिवार मेरे को मिला। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और माता जी भी जो थीं वो MA इकोनॉमिक्स थीं। तो घर में बड़ा पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा सा माहौल रहता था और क्योंकि मैं थर्ड ऑर्डर चाइल्ड थी तो घर वालों की मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था। एक स्वच्छंद उड़ान के लिए मेरे पास एक खुला आसमान था जो मेरे को अपने बचपन की सबसे अच्छी उपलब्धि लगती है। और स्कूली शिक्षा मेरी सेंट ट्रेजा स्कूल और RMV स्कूल से हुई है, उदयपुर में ही हुई है। उसमें भी मेरा बहुत जबरदस्त वेरिएशन मिला है मुझे। 8th तक सेंट ट्रेजाज में एक डिसिप्लिन कॉन्वेंट की छात्रा से लेकर के सरकारी स्कूल के खुले मैदान तक का अनुभव मुझे है। 8th तक मेरा पूरा फोकस एक आदर्श छात्रा बनने का रहता था जिसमें कोशिश होती थी कि 3 मेडल्स जो होते थे वहां पे, फर्स्ट इन क्लास, गुड कंडक्ट एंड मॉनिटर, तीनों मुझे मिले। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती थी। पर जब महिला विद्यालय के उन्मुक्त वातावरण में आई तो मेरी पर्सनालिटी में एकदम बिल्कुल चेंज आया और मैं एक आदर्श छात्रा से एक एक्सपेरिमेंटेटिव किशोरी के रूप में आ गई और मेरा फोकस जो पहले जैसे खाली लिटरेरी एक्टिविटीज में होता था उसके साथ साथ अब ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में एंड इवन नेतागिरी में भी आ गया। और फिर उस स्कूल की मैं प्रेसिडेंट भी बनी हायर सेकेंडरी स्कूल की। और मेरे इस बदलाव के बारे में माता पिताजी को और घर वालों को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। इसका एक बहुत ही सुंदर वाक्य आपको सुनाती हूँ कि हमारे स्कूल में होता था कि जब भी साल खत्म होता था तो पूरे साल भर की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था। तो ऐसे में मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया। हमारी जब सब लोग आकर के बैठे हॉल के अंदर, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला, हमारी छात्र कार्यकारिणी की प्रेसिडेंट और वर्ष सो एंड सो की प्रतिभावान छात्र के माता पिता को मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। और उन्होंने इशारा मेरे पिताजी की तरफ किया। पिताजी दाएं बाएं देखे क्योंकि वो श्रीवास्तव लगाते थे, ही वॉज नॉट नोइंग कि मिस्टर प्रसाद मैं ही हूँ। और दूसरा उनके लिए नई चीज ये थी कि उनकी बेटी वहां की प्रेसिडेंट है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो मतलब इतना खुला हुआ माहौल मुझे मिला, तो जिसमें मुझे प्रगति करने के पूरे मौके मिले। यही है एक छोटी सी कहानी मेरे बचपन की।
1: बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी कहानी सुन के। और कहानी क्या मतलब, जिस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, एक बिल्कुल एक उन्मुक्त आकाश आपने जिया है, वो बहुत ही खूब से। अब थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं। अब ये बताइए कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली में शुरू में ही आपका एक फैसला था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या ऐसा कोई सपना था, या परिवार वालों ने आपको कहा डॉक्टर बनिए, क्योंकि पहले डॉक्टर और इंजीनियर दो ही बनते थे बच्चे?
2: देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक जियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरे परिवार ने ही दी है, और खासतौर से मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई ने। वो भी कुछ परिस्थितियां के आन पे बनाई थी हमारी, तो इसलिए बनना ही था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और एक बार जब उसमें एंटर हो गई तो फिर उसके बाद मजा आने लग गया। तो ये सबका मिला जुला जो था आउटकम था कि मैं डॉक्टर बनी हूँ।
1: चलिए, ब्यूटीफुल। तो आपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वो भी काफी एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया अपना, और फिर आपने ये डिसाइड किया कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी। तो ये किस तरह से हुआ, किस तरह से आपने अपना स्पेशलाइजेशन चुना?
2: देखिए, एक तो पहले उस वक्त ये बड़ा था कि जो टॉपर्स होते थे ना, उनको दो ही सब्जेक्ट लेने होते थे, ये एक ट्रेंड था, आइदर दे गो फॉर मेडिसिन और फॉर गायनी। तो लड़के जो थे वो मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में जाते थे और लड़कियां गायनी में। तो ये एक एडवांटेज मेरे पास था। उसके साथ ही मेरी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर तारा माथुर, वो मेरी एक आइडियल रही है लाइफ में, शुरू से ही मैं उनके जैसे व्यक्तित्व को जीना चाहती थी जिंदगी में। और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और मेरी गाइड भी थी, बाद में मेरी पीजी टाइम में गाइड भी बनी वो जी। और इसके साथ मेडिसिन में मेरे को सबसे अच्छी गायनी इसलिए लगती थी क्योंकि इसमें जब भी कोई पेशेंट जाता था ना घर, तब हम उसको डबल खुशियां देते थे, जनरली ऑब्स्टेट्रिक पार्ट में, कि माँ भी क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ बनी है इसलिए उसको खुशी मिलती थी, और जो उसको एक नया बच्चा मिलता था तो हम एक डबल खुशी के साथ उसे भेजते थे। तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग लगा मुझे, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर गायनी।
1: ये बात तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि एक यही एक ऐसी ब्रांच है, ऐसा स्पेशलाइजेशन है जब आप किसी को भी डबल खुशी देके। जनरली तो आप बीमारी का इलाज करते हो, वो आदमी अपनी परेशानी लेके आता है, उसका इलाज सर्जन भी करता है, मेडिसिन वाले भी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच में आप उसको पेन से रिलीफ भी कराते हो और जो समस्या होती है वो दूर हो, तो साथ में एक बोनस उसको एक बच्चा भी साथ में जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो चलिए, इस खूबसूरत बात पे रुक के हम एक गाने का आनंद लेते हैं। एक जो जिंदगी एक नई जो साथ में जाती है, उसके साथ एक गाने का आनंद लेते हैं और एक पॉज ले लेते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर नूपुर। अब थोड़ा सा हम आपके प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आते हैं, बातचीत करते हैं। आपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तक की आपकी ये जो चिकित्सा यात्रा है, ये कैसी रही? कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे अनुभव रहे आपके इससे, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: जिंदगी ने जहां मुड़ा वहां मैं मुड़ी और बड़ी सहजता से मुड़ी। मतलब कहीं मैंने रेजिस्ट नहीं किया लाइफ को। तो इनिशियली मेरी शुरुआत एक गुनेड़ा नाम के छोटे से लास्ट गांव है राजस्थान का टुवर्ड्स हरियाणा, वहां पे शुरू हुई थी। और वो एक ऐसा गांव था जहां पे कि न तो पानी की कोई व्यवस्था थी और बिजली भी दिन भर में 2-3 घंटे ही आती थी। पर ठीक है, वहां पे भी अच्छे से काम किया और पूरी अपनी स्पिरिट को जिंदा रखा। वहां पे हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वहां पे एक OT एस्टेब्लिश किया जबकि वो एक PHC थी। और वहीं पे हम लोगों ने 2 रिसर्च पेपर्स भी निकाले। तो कभी भी कोई परिस्थिति हमारे लिए रुकावट का साधन नहीं बन पाई। उसके बाद हम विभिन्न चिकित्सालयों में जिला स्तर पे भी रहे, फिर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में भी रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्टरेट में रहे। वहां पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी में मैंने करीब 7-8 साल काम किया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा मेरी जिंदगी का। फिर NRHM जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करने का मौका मिला मेरे को करीब 5 साल। तो वहां पे जो JSSY जो प्रोग्राम चलता है गर्भवती महिलाओं को, उसको लॉन्च करने में की रोल मेरा ही रहा वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को अनुभव मिले। और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे NACO है, NRHM है, ऐसी संस्थाओं में राज्य को कई बार रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर। एक बार तो जैसे मैं आपको बताऊं कि सेफ अबॉर्शन की गाइडलाइंस बन रही थी फॉर सार्क नेशंस, एंड समहाउ ईश्वर की एक कृपा हुई कि सब मुझे इंडिया का जो टीम गई थी उसके अंदर भी भागीदारी निभाने का अवसर मिला। तो भगवान ने मौके तो हर लेवल के हर जगह बहुत दिए, और रिकॉग्निशन भी दिया और सेटिस्फेक्शन भी दिया।
0: बहुत खुशी है, बहुत बहुत ही सहजता से आपने बता दी इतनी सारी उपलब्धियों के बारे में। अब थोड़ा सा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किया है, तो ये बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं होती हैं, तो
1: जी
0: आपने उनको क्लोजली ऑब्जर्व भी किया होगा, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खास समस्या है जो आपने देखी है, जो खास तौर
1: देखिए,
0: से ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है?
1: हाँ जी हाँ जी, देखिए समस्याएं तो ग्रामीण और शहर को देख के नहीं आती। समस्याएं तो व्यक्ति में होती हैं, लेकिन गांव के अंदर जो एक एडिक्ट फैक्टर है, दैट इज इग्नोरेंस। उन्हें पता नहीं है चीजों के बारे में, उन्हें पता नहीं है ये सामान्य है या असामान्य है। वो उसको जिंदगी का पार्ट समझ के जीती हैं, तो इसलिए रोग भी बढ़ जाता है उनका। साथ ही अगर उनका कोई डायग्नोस भी हो जाता है, कुछ डायग्नोसिस हो जाता है, तो पहले तो डिनाइल फेज में जाती हैं बहुत ज्यादा कि नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं है। फिर अगर फिर भी आप उनको किसी तरह कन्विंस कर लो तो फिर वो इनडिफरेंस पैदा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो तो प्रायोरिटी में हमेशा अपने आप को सबसे नीचे ही रखती हैं। तो ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करना टू टेक ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भाई अवेयरनेस तो हम पैदा कर लेते हैं IEC के माध्यम से, लेकिन उनको मोटिवेट करना और उनको ट्रीटमेंट की कंप्लायंस एंश्योर करना, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ये थोड़ा फर्क है शहर वालों से।
0: अच्छा, मैं वैसे ही बाय द वे अब तक अब सवाल पूछ रहा हूँ, जो ग्रामीण महिलाओं को आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी मेडिसिन बताती होंगी, तो क्या ये किस तरह से इंश्योर कर पाते हैं कि ये उसको रेगुलरली ट्रीटमेंट को ले रही है, नहीं ले रही है? क्या इनके हस्बैंड्स को भी या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी एजुकेट करती हैं, कुछ समझाती हैं कि भाई ये दवाई इस टाइम लेनी है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, क्योंकि
1: देखिए
0: वही
1: कोशिश,
0: इग्नोर। हाँ
1: जी कोशिश तो जनरली ये है कि जो साथ में आया है उसे भी समझाया जाए। और ग्रामीण परिवेश में जनरली हस्बैंड्स नहीं आया करते साथ में, उनके साथ में या तो उनकी सास आएगी या जेठानी आएगी या ननंद आएगी, इस तरह के रिश्ते आते हैं। तो उसमें कंप्लायंस इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो लोग उनके साथ नहीं रह रहे होते। हस्बैंड तो साथ रहता है, अगर उसको समझा दो और वो आ जाए तो कंप्लायंस, एक बेटर कंप्लायंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ननंद है अपने घर चली गई, जेठानी अपने घर चली गई एक बार दिखा करके, तो कंप्लायंस वहां पे मुश्किल है, काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब जागरूकता आ रही है धीमे धीमे, वो भी अवेयर हो रही है अपनी हेल्थ के लिए, तो पहले से तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं अब।
0: तो चलिए, इसी ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी हैं और जो आपके अनुभव रहे हैं उसकी बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर अपनी बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर नूपुर। अब ये बताइए कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि आप तो एड्स और जो भी इस तरह के गवर्नमेंट के कैंपेन्स हैं, अभियान हैं, उनसे जुड़ी रही हैं, तो एड्स और मातृ स्वास्थ्य अभियानों में इतना काम किया है आपने, तो उस दौर में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या अवेयरनेस, क्या चैलेंजेस आपको फेस किए आपने?
1: देखिए, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि एड्स आता है और मातृ स्वास्थ्य आता है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं। मतलब हमारी व्यवस्था है, हमारी जो समाज है, हम जो जो हमारी फिजि मतलब हमारा जो जीवन है उसके अंदर जैसे महावारी है, गर्भावस्था है, यौन संबंध है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। तो इनसे रिलेटेड परिस्थितियां भी लगातार पैदा होती रहती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक चीज का उन्मूलन कर दिया तो वो आगे कभी नहीं होगी। जैसे साहब हमने कह दिया कि हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया एक बार, तो वो प्रॉब्लम घूम के नहीं आएगी। ये तो ऐसी है क्योंकि ये प्रोसेसेस लगातार हैं, सतत प्रक्रियाएं हैं समाज की, तो इनमें प्रॉब्लम्स भी और परिस्थितियां भी नई आती रहती हैं। तो ये एक तरह का चैलेंज है कि इसमें रेगुलर आने वाली परिस्थितियों को हमेशा साथ के साथ डील करना पड़ता है। एक बार के निराकरण से इनका पूरा निराकरण नहीं होता। तो बेसिकली सिस्टम हैज टू बी ऑन टोज ऑलवेज। मतलब आप रिलैक्स नहीं कर
0: सिस्टम भी टोस पे होना चाहिए, और अवेयरनेस भी लोगों के अंदर,
1: हाँ जी,
0: समाज के
1: हाँ
0: अंदर
1: जी,
0: और पेशेंट्स
1: मतलब
0: के
1: बिल्कुल
0: अंदर।
1: जिसको बोलते हैं ना, पूरा समाज ही इसका निराकरण की जरूरत होती है। आप छोड़ नहीं सकते इसको। एक तो इसका ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते, और दूसरी बड़ी चुनौती ये हमारी जो प्रचलित धारणाएं हैं, महिलाओं महिलाओं से जुड़े रोग, एड्स, उससे जुड़ी धारणाएं, वो इस तरह से अंदर से गहरी जड़ों में समाई हुई हैं कि उनको उनका भी निराकरण करना है और साथ में रोग का भी उपचार करना है। तो इन दोनों को साथ में डील करना भी एक चुनौती होती है दोनों ही विषयों में।
0: अच्छा डॉक्टर नूपुर, आपका इतना लंबा अनुभव है, कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा मरीज, कोई ऐसी बात जो आपको उससे जुड़ी हुई याद रहती है, जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, आज भी आपको याद आ जाती है, अरे वो मरीज ऐसा था या वो ऐसा मेरा अनुभव था, कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे?
1: ऐसे किस्से तो काफी होते रहते हैं। कभी कोई इनफर्टिलिटी का केस होता है, सालों से उसने कंसीव नहीं किया है और वो कंसीव कर जाता है, तो आपको जो दिली खुशी होती है वो बयान नहीं की जा सकती। या कभी आप कोई अनयूजुअल चीज को डायग्नोस करते हो, पर एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा दिल में जिसने छुआ है वो ये है कि जब मैं पहली बार HIV पॉजिटिव बच्चों से मिली थी, जब उनसे मिली तो मैं अंदर से हिल गई। वो बेचारे इनोसेंट सफरर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी, और वो भी बिना उनके किसी कसूर के। तो उनको जो जब देखा था तब रियली जिसको बोलते हैं ना अंदर से हिलने वाली फीलिंग हुई थी। और पहले तो मैं RSX के माध्यम से, और मेरी क्योंकि जॉब का पार्ट था, मैं उनसे जुड़ी हुई हुई थी और उनके लिए जो भी कर सकते थे वो हमने जॉब में रहते हुए किया। पर आज भी मैं उन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो कि HIV पॉजिटिव बच्चों की केयर करते हैं, और मैं यथासंभव उसमें सहयोग देती हूँ। तो वो एक ऐसा है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: नहीं, सही बात है, बच्चों को अगर ये बीमारी हो जाए जबकि बिना उनके किसी कसूर के, तो ये तो बहुत ही
1: जी
0: चिंताजनक है। तो अब आप रिटायरमेंट के बाद में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रही है, ये इतनी समर्पण और इतनी मेहनत आप कैसे करती हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: ये कोई समर्पण नहीं है, ये तो एक्चुअली आपने पूरा अपना जीवन जिया है। आपने अपनी स्किल्स को पहले एज बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट, आपने वहां पे सर्विसेज दी है, अभी भी आपके पास स्किल है, आप में कैपेसिटी भी है, तो उसी से किसी को फायदा हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इट्स नॉट अ समर्पण, इट इज जस्ट कि भाई हम क्या दे सकते हैं समाज को, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समर्पण तो बहुत बड़ा बड़ा शब्द हो जाता है।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एक तरह की खासियत तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद में ऐसे ऐसे जॉब्स में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जहां उनको सिवाय एक कमाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर उस रास्ते को छोड़ के आप इधर मुड़ रही हैं तो ये एक तरह का एक बहुत बड़ा
1: नहीं, वो शायद
0: डिसीजन
1: मुझसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, वो मुझसे ज्यादा मेहनती लोग
0: ये बड़ा लंबा विषय है।
1: हैं।
0: चलिए, तो इसी बात पे रुक के, जो आप में एम्पैथी है लोगों के प्रति, उस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी।

0: चलिए डॉक्टर नुपुर, अब एक आपके दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं, आपका जो पर्सनालिटी का एक दूसरा आयाम है उसके बारे में बात करते हैं। आप एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना भी हैं, तो कथक सीखने की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे इंटरेस्ट आया है इसमें?
1: देखिए, इसमें भी मैं अपने परिवार को ही इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि जब 6-7 साल के हुए थे तब मम्मी डैडी ने ही हमको म्यूजिक स्कूल में डाला था, हम तीनों भाई बहनों को। हाँ, ये चॉइस उन्होंने हमको दी थी कि तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो, पर म्यूजिक को वो बहुत जरूरी समझते थे लाइफ में, तो हम तीनों को उन्होंने म्यूजिक स्कूल भेजा। तो उसमें, क्योंकि कथक बहुत ही हाई एनर्जी डांस है, बहुत ही एक्सप्रेसिव डांस है, और उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है। हमारे जो सर थे वो मथुरा प्रसाद संगीत विद्यालय, गांधर विद्यालय से कनेक्टेड थे वो, तो उसमें जो मतलब डिसिप्लिन मिला जो

0: हाई एनर्जी मिली, उसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, तो मेरे को बस उसमें फिर रुचि हुई। और हमारे सर भी बहुत अच्छा डांस करते थे वहां पे, जो ऑलरेडी पहले आते थे बड़े, उसमें हम लोगों के टाइम की जो एक नृत्यांगना है उसको आप सब लोग जानते हो, प्रेरणा श्रीमाली जी हैं, जो कि उस टाइम उन्होंने शुरू शुरू में वहां पे शुरू किया था, उनका बिल्कुल शुरुआत थी वहां पे। तो उनका उनके साथ भी हमें देखने का सौभाग्य मिला। तो ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे लाइफ में कि भाई इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा तो मन किया। जी
1: अच्छा, तो इसके कथक के अलावा आप संगीत है, पेंटिंग है, कविता भी आप लिखती हैं और फिर कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है
0: जी
1: जैसा लोगों ने बताया है। तो ये जो शौक है आपको किस तरह से लगे और किस तरह से ये लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, ये सारी मेरी हॉबीज समय के साथ में धीमे धीमे डेवलप हुई हैं। मतलब जहां जिसकी जरूरत पड़ी उस चीज को डेवलप किया है। मतलब विवाह से पूर्व कुकिंग नहीं आती थी, पर बाद में मदर इन लॉ बहुत अच्छी कुक मिली, साथ में हस्बैंड ने भी बहुत जबरदस्त एक्सपोजर दिया डिफरेंट होटल्स में ले जा करके। तो मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कुकिंग में, एंड डेफिनेटली अब कुकिंग में पूरा इंटरेस्ट है मुझे। और उसके साथ ही जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ भाव होते हैं लाइफ में या कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको हम शब्दों में कन्वे नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी को, या हम उनको किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनको अभिव्यक्ति देने के लिए फिर मैंने इसमें जैसे कविताएं लिखना शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी। क्योंकि हर चीज को आप कह नहीं सकते, वो आपकी खुद की अनुभूति होती है, आपको समाज का भी डर होता है कहें कि नहीं कहें, और कहीं अभिव्यक्त भी करना होता है। तो उसमें फिर मेरे को ये कविता है, पेंटिंग है, ये बहुत अच्छे माध्यम मिले। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है मेरे लिए, और लाइफ की जीवंतता भी बनी रहती है, थोड़ी गति भी बनी रहती है इससे, तो अच्छा लगता है लिखने में। बाकी
1: चलिए, बहुत बढ़िया।
0: प्रोफेशनली कभी ऐसा सोचा नहीं।
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतने कम डॉक्टर्स होते होंगे जो अपनी स्किल सेट के अलावा, अपनी नॉलेज के अलावा, इस तरह की भी, जो मेडिकल नॉलेज के अलावा भी इस तरह की सब चीजों में उनको इंटरेस्ट होता है। अच्छा, ये कुकिंग पे थोड़ी मैं बात और करना चाहूंगा। कोई
0: जी
1: ऑफ द कफ सवाल है, कोई ऐसी कोई खास डिश हमारे लिस्टर्स के लिए बताना चाहे जो आपकी स्पेशलिटी हो, जो आप बहुत अच्छी बनाती हो और आपको लगता है कि, और
0: देखिए
1: सिंपल भी हो बनाने में, ऐसी कोई डिश के बारे में
0: देखिए,
1: बताइए।
0: मेरे को जो लोग बात कहते हैं कि मैं अच्छा बनाती हूँ, एक्चुअली हम नॉन वेज हैं, तो उसके अंदर एक साग मटन करके होता है, वो मेरी मतलब यूनिक डिश है, और जिसने भी खाई है सबको पसंद है। इसके अलावा एक होती है कैरेमल पुडिंग, पुडिंग में है। तो ये दो चीजें डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ देम, तो किसी को भी सीखनी है दे कैन कम टू मी, मैं बिल्कुल खुशी से सिखा सकती
1: चलिए
0: हूँ।
1: चलिए
0: जी
1: चलिए। तो श्रोताओं, ये खास बात है, देखिए डॉक्टर जो है आपको डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखा रही है। एक साग मटन आप सीखिए इनसे और कभी आपने कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। तो चलिए, इसी बात पे रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ डॉक्टर नुपुर, तो इस समय आप शास्त्रीय संगीत भी सीख रही हैं। अब ये बताइए कि ये इसके पीछे क्या ट्रिगर था, कोई खास व्यक्ति या कोई घटना आपको लगा कि मेरे को संगीत सीखना चाहिए, और कुछ कैसे रहा ये शास्त्रीय संगीत और कौन सी शास्त्रीय।
1: जी मैंने आपको बताया, जैसे बचपन में हम तीनों को म्यूजिक स्कूल भेजा गया था। मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो शी स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल। तो उस चीज ने मेरे को कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा मेरे मन में थी, और अब मेरे पास समय भी है रिटायरमेंट के बाद में, मुझे अच्छा पहले भी लगता था, और तो इसलिए मैंने जो है सीखना शुरू किया। फिर इसके साथ ही इस एज में थोड़ा फिजिकली फिट भी रखता है, लंग्स वंग्स को स्ट्रांग रखता है, तो मेरी जो फिजिकल हालत है उसके हिसाब से भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है म्यूजिक। यही है इसका रीजन, तो और कोई खास नहीं।
0: तो श्रोताओं देखिए, ये खास बात जो एक डॉक्टर बता रही है आपको कि संगीत से बाकी चीजें तो जो होती हैं वो अच्छी होती हैं जीवन में, लेकिन आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आपके लंग्स की पावर बनती है, बढ़ती है। तो ये एक खास बात है संगीत के, और जो एडवांटेजेस है लेकिन कोलेटरल एडवांटेज एक ये भी है। तो चलिए डॉक्टर नूपुर, ये बताइए कि आपके प्रिय गायक या गायिका कौन से हैं, कोई खास गीत जो आपको याद आता हो उसके बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है।
1: हाँ, बड़ी पुरानी सी पसंद है मेरी, मेरे को तलत महमूद बहुत पसंद है,
0: हाय हाय हाय
1: और उसकी उनका भी खास तौर से दिले नादान तुझे हुआ क्या है, ये मेरा पसंदीदा गाना है। इसके अलावा ये हवा ये रात, वैसे दो तीन गाने हैं जलते हैं जिसके लिए, तो
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ
0: सुजाता का बहुत बढ़िया।
1: जी हाँ जी, तो ये कुछ गाने हैं जो मुझे पसंद है उनके, मैं सुनना पसंद करती हूँ जब अकेली होती हूँ तब।
0: बहुत बढ़िया, क्या मखमली आवाज है, तलत महमूद मेरे भी फेवरेट हैं और मैं भी बस उनको ही सुनना पसंद करता हूँ। और उनके
1: जी
0: जो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, अगर मिर्जा गालिब फिल्म का जो गाना था तो
1: जी
0: वो बहुत बढ़िया था। तो चलिए यहाँ रुक के गाना सुन लेते हैं, आप करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस
1: हाँ जी
0: एक दो सवाल और फिर हम इसको रैप अप करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी

0: हाँ डॉक्टर अनुपुर, अब देखिए आपने इतना अच्छा जीवन जिया है, इतने सारे अनुभव हैं आपके साथ में, मेडिकल फील्ड के भी हैं, मेडिकल फील्ड्स के परे के भी अनुभव हैं, तो आप ही बताइए कि जिंदगी में सक्सेस या सफलता को आप किस रूप में देखती हैं, उसको क्या आप उसके बारे में क्या सोचती हैं?
1: सफलता यानी देखिए सफलता की सबकी परिभाषा अलग-अलग होती है। मेरे निगाह में तो एक सहज, सुगम, थोड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ अगर बीत जाए आपकी तो सफल जीवन है। और एक ऐसा जीवन जहाँ पे कि प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी एक सामंजस्य हो, और ना तो आप किसी तरह से डिप्राइव्ड फील करें ना आपका कोई फैमिली मेंबर करे, क्योंकि अगर आप अगर फैमिली में रह रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए और वो भी डिप्राइव फील ना करें, इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं हो सकता।
0: ब्यूटीफुल, ये खास बात है, जो लोग सफलता को, सक्सेस को पावर, पैसे से जोड़ते हैं, उनके लिए कितना बहुत ही सटल संदेश दिया है आपने कि एक सहज जिंदगी जीना, एक नॉर्मल जिंदगी जीना, एक अनकॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीना, वो है जो आपको सेटिस्फाइड रखता है, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको एक तरह से सफल भी माना जा सकता है। बहुत बढ़िया बात। तो अब अंत में डॉक्टर निपुर, हमारे श्रोताओं को कोई आपका संदेश हो वो दीजिए, आप कोई

0: बेसिकली इस इन दो लाइनों ने मेरे को बहुत अफेक्ट किया है कि जीवन में जो भी पल, जो भी मौके या जो भी अवसर जब भी आए, उनको पूरा 100% जी लो, क्योंकि अगर एक बार निकल गया ना वो समय, तो वो वापस नहीं आएगा। और जो खुशी उस मोमेंट पे मिलती है, वो शायद हमें बाद में ना मिल पाए, पर साथ ही में हम कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी हो पाएंगे, क्योंकि वो मौका हमको ऊपर वाले ने दिया है। तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, कुछ वो मतलब लौट के नहीं आएगा। तो ये मेरी थोड़ा संदेश है, चाहे आप इसको संदेश समझ ले या मेरी लाइफ का मोटिवेटिंग सेंटेंस समझ ले, यही है। और क्योंकि अब अंत में नियति सबकी एक ही होनी है, और एक मेरे हिसाब से एक शाख के पत्ते के समान होती है, जिसको मैंने कुछ पंक्तियों में ढाला है। हवा से हाथ मिला, हवा से हाथ मिला, उड़ चला बेपरवाह बे आवारा, पता देता रहा सदा दरख्त का जिससे वो था उगा। संग हवा के मटकता रमकता लहकता चहकता, रहा नापता अनगिनत दूरियां, कभी उलझता कभी संभलता, न था डर न थी मजबूरियां। पर रियलिटी ये, हवा तो हवा थी, कभी यहां तो कभी वहां थी, जाने कब कहां हो गई, क्यों और कैसे बेपरवाह हो गई। लड़खड़ा गया डगमगा गया, लड़खड़ा गया डगमगा गया, खोजता अपना पता वो अकेला पत्ता, पर अब न हवा थी न दरख्त था केवल एक स्तब्ध पत्ता, एक अकेला लापता पत्ता। दिस इज ऑल, थैंक यू।
1: बहुत सुंदर मजा आ गया। आपका पहला गीत आपने आपकी कसम का गाया था, वो मेरा भी फेवरेट गाना है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर भी थी और ये खूबसूरत गाना था, और ये कविता तो बिल्कुल एक जीवन की एक यात्रा है जैसी हम सबकी है, उसके बारे में इतनी खूबसूरत तरह से आपने सारी बात बता दी है, तो मजा आ गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर नुपुर जी, आज आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, संघर्ष, संवेदनाएं और जीवन दर्शन हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मेरा भी जीवन के रंग गीत के संग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अभिव्यक्ति का मंच दिया। धन्यवाद।
1: तो चिकित्सा सेवा के साथ साथ कला, संगीत और संस्कृति के प्रति आपका प्रेम वास्तव में जीवन को संतुलित और सुंदर बनाने की प्रेरणा देता है। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ, सक्रिय और प्रेरणादायी बनी रहें और समाज को अपनी सेवाओं तथा सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर समृद्ध करती रहें। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आलोक कुमार आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN। थैंक यू
2: दोस्तों। जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन

0: रास्ते की। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब।

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतो उठो, कंस का राज

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो SN एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। और आप सुन रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां अल्फाज बोलेंगे और एहसास महसूस होंगे। जी हां दोस्तों, तो हम सफर शुरू करते हैं अल्फाज से एहसास तक का। कहते हैं कि गजल सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि दिल की वो दबी हुई आह होती है जो संगीत का लिबास पहनकर हमारी रूह तक पहुंचती है। एक तरफ जगजीत सिंह जी की वो मसीहा जैसी आवाज जो पुरानी यादों को ताजा कर देती है, दूसरी तरफ मेहदी हसन साहब जिन्होंने गजल को एक नया मुकाम दिया, और तीसरी तरफ गुलाम अली साहब जिनकी गायकी में एक अलग ही थरथराहट और दर्द है। तो दोस्तों, आज की शाम थोड़ी फुर्सत की है तो क्यों ना हम सब मिलकर उन कागज की कश्तियों को याद करें और उन रास्तों पर चलें जहां जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मोहब्बत में कदीम इंतहा अभी बाकी है, किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत में कदीम इंतहा अभी बाकी है, अभी तो कारवाने रफ्तागान बाकी हैं, मगर वो बचपना वो बेफिक्र

उतरी। अब कहाँ है दिल, अब तो सिर्फ यादों का धुआं ही बाकी है। दोस्तों, बचपन की वो यादें किसी सरमाए से कम नहीं होती। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदें बसी हुई हैं। तो आइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की पुरकशिश आवाज में डूब जाते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जी लेते हैं। सुदर्शन फाकिर का ये मशहूर कलाम, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। गजल मुलाहजा फरमाए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: आखिर मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से।
1: जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते, जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते दोस्तों। हर मोड़ पर पुराने दोस्त बाकी नहीं होते। प्यार तो हर कोई करता है इस दुनिया में, मगर मौत तक जो साथ निभाए वो साथी नहीं होते। अभी हम बचपन की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब रुख करते हैं उस आवाज की तरफ जिसे शहंशाह गजल कहा जाता है, यानी मेहदी हसन साहब। उनकी गायकी में एक ऐसी संजीदगी है जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। उनका कहना है कि जीते जी मोहब्बत करना तो आम है, पर असली इम्तहान तो मौत के बाद भी उस रिश्ते को जिंदा रखना है। तो पेशे खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन खां की ये लाजवाब गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। कतील शफाई के कलाम को अपनी रूहानी आवाज में गाकर मेहदी हसन साहब ने अमर कर दिया।

दोस्तों, निगाहों के तसव्वुर में सूरत अभी भी बाकी है। निगाहों के तसव्वुर में वो सूरत अभी भी बाकी है। मोहब्बत की वो हल्की सी शरारत अब भी बाकी है। जमाना बीत गया उनसे बिछड़े हुए ऐ दिल, मगर दिल में मिलने की वो हसरत अब भी बाकी है। मोहब्बत का असली मज़ा तो उस इंतज़ार में है दोस्तों, जो रातों की नींदें उड़ा देता है। हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई ये गज़ल और ग़ुलाम अली साहब की वो थरथराती सी आवाज़, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं कहीं ठहर गया हो। सुनिए इश्क की उस मासूमियत को बयान करती ये दास्तां। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये दर्द से भरी दास्तां।

हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक साहिल को जहाज नहीं मिलते। बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, वो होश की दुनिया में कभी बाज नहीं मिलते। कहा जाता है कि इश्क में थोड़ी दीवानगी ज़रूरी है। जो लोग हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखते हैं, वो भला मोहब्बत की इस बेखुदी को क्या समझेंगे। जगजीत सिंह की रेशम जैसी आवाज़ में पेश है निदा फाजली का ये मशहूर कलाम। होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।

हमने कहा था हर एक मोड़ पर साथ निभाएंगे, मगर अब तो रास्ते भी हमसे सवाल करते हैं। चलो माना कि तुम बेवफा नहीं हो फराज, मगर कभी कभी तुम भी कमाल करते हो। आगे फराज साहब कहते हैं, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। अहमद फराज का ये कलाम मेहदी हसन साहब की आवाज में एक इबादत बन गया हो जैसे। कभी कभी रिश्तों में ना चाहते हुए भी इतनी दूरियां आ जाती हैं कि दिल फिर इतना ही चाहता है कि सिर्फ एक बार ही सही हमें दुखाने के लिए ही आ, पर लौट आए कोई। सुनिए एक टूटे हुए दिल की खामोश पुकार, मेहदी हसन साहब की पुरसकून आवाज में ये गजल। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

दोस्तों, अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। गुलाम अली साहब की गायकी का एक अलग ही रंग है दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शिकायत और थोड़ा सा नशा। अकबर अलाहाबादी साहब के तंज और गुलाम अली की आवाज एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, एक अलग सा ही नशा छा जाता है। वो कहते हैं, ना तजुर्बाकारी से वायस की ये बातें हैं, मतलब ना तजुर्बाकारों से वायस उपदेश देने वाले की ये बातें हैं। इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। या वायस उपदेश देने वाला है और तंज है कि उसने कभी इश्क का नशा चखा ही नहीं, तो वो इसकी गहराई को क्या समझेगा। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका।

आपका आज का सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात और एक नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक आप अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, गाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी ने खेती की तैयारियां कर ली है। बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में बुआई तक कर चुके हैं और काफी किसान अभी बाजारों में बीजों की दुकानों पर बीजों को खरीदते हुए और अन्य जुताई के सामान को खरीदते हुए अलग अलग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप सभी के लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियों को अब तक पहुंचाता रहा है और आज भी हम खेती से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। अभी आपने सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।
1: किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसानों ने शिरकत की। इस मेले के जरिए उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई गई हैं। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए दिखाते हैं आपको।

0: कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हर साल की तरह इस साल भी कई फसलों और फलों की विकसित नई किस्मों की जानकारी दी गई। किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसानों को नवीन जानकारी तो दी ही गई, साथ ही उन्नत किस्मों के बीज भी दिए गए, जिससे किसान कम समय व कम स्थान में अधिक पैदावार ले सकें। इसलिए इस बार मेले का विषय आत्मनिर्भर किसान रखा गया। मेले में देश भर के किसान शामिल हुए और कोविड को देखते हुए मेले में समुचित व्यवस्था भी की गई।
1: मैं विगत 30-35 वर्षों से LLB करने के बाद 1-2 साल में कचहरी गया, उसके बाद मेरा मन कचहरी नहीं लगा, मैं खेती में लौट आया और खेती में मैं कुछ नए किस्म की बीज जो है डेवलप किया हूँ, जो कि हमारी वैरायटी जो है भारत सरकार में रजिस्टर्ड हो गई है UFR में, और वह वैरायटी उसके साथ साथ जो है भारत सरकार की द्वारा जो अधिसूचित प्रजातियाँ हैं उसको मैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके, इसमें हमारे पास 3-3 प्रोसेसिंग प्लांट है सीड का और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है आयल का, तो मैं लगभग 50-60 आदमी को जो है अपने गाँव में रोजगार दिया हूँ और सामाजिक दायित्व भी निभाता हूँ, जैसे कोरोना काल में काफ़ी लोगों को राशन देना, चावल दाल बांटना, कंबल बांटना, और मैं अपने गांव के विद्यालय को जो है गोद लेकर के उसको काफ़ी अच्छा हम लोग रिनोवेट किए हैं, इससे बच्चे जाके पढ़ के उसमें बहुत ही जो है अपने को गुड फील कर रहे हैं। इस तरह से किसान को संपन्न होना चाहिए, मेरा शुरू से एक कंसेप्ट था कि किसान खेती के साथ साथ जब तक जो है उद्यमी नहीं बनेगा तब तक वह सफल नहीं हो सकता। सरकार खेती बढ़ावा दे रही है, आज हमारे पास इतना गेहूं धान उत्पादन हो जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए किसान को अपने उत्पाद को एक उद्योग में बदलना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि वो भी हमें खेती में बहुत बड़ा सेक्टर है, कम पैसे में बिना पूंजी के आप खेती में खड़ा हो सकते हैं, और जगह आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान महंगी मिलेगी, लेकिन आप खेती में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे कई साथी जो है थोड़े में शुरुआत करके आज जो है कई करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 2-3 करोड़ का टर्नओवर हमारा भी साल का है। और इस तरह से मैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेला में जाइए, वैज्ञानिकों के पास जाइए, उनसे सीखिए, प्रगतिशील किसानों के साथ जाइए और फिर उसमें अपना एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए।
2: खेती इतना साइंटिफिक चीज है और उसमें इतना पैसा है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारा अगर उदाहरण ले तो मैं कभी खेत पर नहीं गया था, 10 साल का हॉस्टल में गया था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले गए, रिटायरमेंट के थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले गए, खेती में आए तो काम शुरू किया, उसमें 2-4 साल तो लग गया, लेकिन अगर आत्मा से और मेहनत से काम किया तो आज हम करोड़ों रुपए की गाजर बेचते हैं और कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये इस खेती से ही हुआ है। तो मैं युवाओं को ये कहूंगा कि आप इस खेती के अंदर आइए और इसको एक उद्योग की तरह समझ के और इसको एक इज्जत का धंधा समझ के तब उस पर काम करें, तो आपको इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। किसान खुद सक्षम है और उसको कोई भी मदद मिल जाए वो ठीक है, लेकिन वो अपने दम पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि शुरू के 10 साल में मेरे ख्याल में हमने कोई सरकार से मदद नहीं लिया था, और जब मदद की जरूरत पड़ी तो सब्सिडी भी मिली, बैंक से लोन भी मिला, पूसा इंस्टीट्यूट जैसे जैसे हमें बीज का, खाद का, रखने काम करने का, खेती करने का बहुत बड़ा योगदान मिला। कोई भी युवा अगर इस काम को, कोई भी नई चीज करना चाहेगा तो सरकार और ये पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ही मददगार साबित होते हैं।
3: किसान साथियों, आइए सुनते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए किसान भाइयों ने किस तरह अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की खेती करके लाभ लिया है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: किसानों से संपर्क के दौरान नवापाड़ा के कुछ किसानों ने मछली पालन को लेकर हमसे कुछ जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आग्रह किया था, तो आइए सुनते हैं विपिन कैसे मछली पालन करते हैं और कैसे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं।
5: विपिन कुमार है, मैं गांव बुटाने के रहने वाला हूं। अब मैं अपने फादर साहब श्री सुल्तान सिंह के साथ मछली व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग कराते हैं, युवाओं की ट्रेनिंग कराते हैं, जो जिसमें फिश ब्रीडिंग से लेके फिश प्रोडक्शन तक बताते हैं कैसे करना है। कोई भी नया किसान उसके साथ जुड़ना चाहे उसको हम पूरा ट्रेन करते हैं। फिर हमने एक नई RS टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें कम पानी में कम जगह में ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। जो हम बाहर 30 एकड़ में मछली पैदा करते थे वो मात्र 1200 गज में पैदा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है पर उसमें हमें काफ़ी फायदा पहुंचता है। और जैसे कि जो चीज जिस फार्मर के पास कम लैंड है वो उस व्यवसाय को अपना सकता है और उससे काफ़ी लाभ कर सकता है। यूथ के लिए यही फायदा है कि वो जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपनी जो नॉलेज स्किल्स है उसको बढ़ाएं और अपने आप को रोजगार की तरफ लगाएं। और जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई उसके तहत जॉब गिवर बने ना कि जॉब टेकर बने।
3: किसान भाइयों, अभी आपने विपिन जी से सुना कैसे उन्होंने मछलियों का पालन करके अच्छे से लाभ कमाया और साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया युवाओं के लिए। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से भीली गीत को।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान मेले किसानों को कृषि की राह में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। ये मेला उन किसानों का भी पथ प्रदर्शन करता है जो कृषि के क्षेत्र में नए हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोधों और किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है।
1: गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा।
2: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब शाम 6 बजे।
3: किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं मछली पालन के ऊपर। मछली पालन करके हम कैसे अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: आइए किस तरह से कर सकते हैं मछली पालन बेहतर तरीके से जानते हैं।

0: शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियां अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलग्नियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है, इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, अभी आपने मछली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक को और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका मुहपका यानी FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए।
1: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: लाभ के लिए कुछ किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक खाद क्षणिक लाभ देती है और इसके लगातार इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, वो भी आधुनिक बदलाव के साथ, जिससे लागत में कमी और मुनाफे में इजाफा किया जा सके। हरियाणा करनाल के किसान जगत राम ने भी अपने खेतों में कुछ ऐसी ही अभिनव प्रयोग किए। उनके खुद के बनाए मॉडल में जगत राम जी एक एकड़ खेत से करीब 40 से 50 हजार की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें देसी बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वे भी सामान्य खेती किया करते थे, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। फिर किसी महानुभाव के एक वीडियो ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और वे पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ गए। आज वे अपने खेतों में तीन तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देसी गाय के गोबर से बनी खाद, 6 से 8 तरह की हरी खाद, फसल अवशेषों से बनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। वे रबी में करीब 40 फसलें व खरीफ में करीब 40 फसलें लेते हैं। इसके लिए वे अंतर फसल विधि का प्रयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसलें आपस में प्रतिस्पर्धा ना करके एक दूसरे के बढ़वार में सहयोग करें। इसके लिए किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए, जगत राम जी इसका खास ख्याल रखते हैं।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 से 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आइए सुनते हैं सफल किसान की दास्ता। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और किसान एक सफल किसान की कहानी हमें प्रेरणा देती है। इस कहानी से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से जैसे मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी, उंगलियों पे मेरे पूरी 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे दो तीन तीन बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में भी मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया।
1: वे मानते हैं कि किसान को इस तरह से खेती करनी चाहिए कि उन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़े, इसलिए वे अपने खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मौसमी सब्जी फसलें, मसाला फसलें, औषधीय फसलें, लगभग हर तरह के फल की खेती करते हैं। इन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलती रहे, इसके लिए जगत राम जी ने 14 देसी गाय पाल रखी हैं। गाय के दूध को बेचकर वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा रहे हैं।
0: सबसे पहले आप छोटा एरिया से, अब अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना, तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो। अनाज, दाल, तेल, सब्जी, फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते करते करते करते आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर को जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग, और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया। और ये बहुत जबरदस्ती इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई, कोई उद्योग नहीं है।
1: जगत राम जी का खेती मॉडल उन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है जिनके पास थोड़ी भूमि है। इसके साथ ही किसान चाहे तो बाजार की नब्ज को समझकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें वे जैविक रूप से तैयार फसलों का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो खेती में अपार संभावनाएं हैं जो तरक्की की ओर ले जा सकती हैं।
2: किसान साथियों, अभी आपने एक सफल किसान की दास्तां को सुना, आइए मिलवाते हैं एक और किस सफल किसान से और सुनते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
3: सिक्स मंथ पहले मैंने ये अपना कड़कनाथ फार्मिंग स्टार्ट की है, जो कि ये आपको बताना चाहूँगा कि कड़कनाथ जो है आपका मध्य प्रदेश झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का ये बर्ड है। तो वहाँ से हम इस बर्ड को जब हमने वहाँ पे एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो एमपी कड़कनाथ को जो इस प्रमोट करने के लिए बनी हुई है उस पर हमने कॉल किया और वहाँ से हमें पता चला कि

उन्होंने बोला कि आप आ जाइए वहाँ पे, मैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया। मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे कुछ दो तीन दिन जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ली, इसके बारे में जाना। और यहाँ पर मैंने फिर जो है आपका स्टार्ट किया फार्मा के यहाँ पे। और हमने क्या किया है कि हमारा आशीष कड़कनाथ मुर्गी पालन है मध्य प्रदेश झबुआ का, जो कि नंबर वन अवार्डेड है मध्य प्रदेश में। और इसके शाखा हमने गाज़ियाबाद में स्टार्ट की है। गाज़ियाबाद में स्टार्ट करने के बाद हमारा इसका शाखा का उद्देश्य है कि पूरे देश में हमें चिक्स की और जो ये बर्ड्स हैं इसकी सप्लाई के लिए, तो हमें बड़ी समस्या आती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो हमने अभी एक तरीके का दिल्ली गाज़ियाबाद में कैरियर बनाया है, जैसे कि वहाँ से माल पहले यहाँ आ जाता है और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम चिक्स, जो छोटा चिक्स 1 डे ओल्ड, 15 डेज ओल्ड, 30 डेज ओल्ड, फुल साइज मुर्गा अगर चाहिए तो वो सब हम यहाँ पे करते हैं। हम लोगों उन लोगों को पूरा ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उनको क्या वैक्सीनेशन होती है पूरे, और किस तरह से पाला जाए एक मुर्गी के लिए और 1,000 बर्ड्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो सारा हम ट्रेनिंग में उन लोगों को बताते हैं, इनका खाना सारा चीज़ें। देखिए, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ किसी नए फार्मर के लिए कि स्टार्टिंग में अगर जैसे आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जगह नहीं है तो आप किसी बने बनाए फार्म को अगर आप रेंट पे स्टार्टिंग में करें, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा फार्म में पैसा ना लगाएं। और धीरे धीरे अगर आप उस फार्म का, जैसे कि इसके हिसाब होता है कि एक बर्ड के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, तो अगर आप उसी हिसाब से आपने अपनी बजट के अनुसार बर्ड्स लाइए, जिससे कि आपका जो अगर आप रेंट पे अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में कोई फार्म, तो उसमें आपका लो इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग किसान इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं कि एक साथ 5 लाख रुपये कहाँ से लगाएं, क्योंकि 5 लाख रुपये की कॉस्ट सिर्फ आपके सेट बनाने में ही आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आप इनिशियली स्टार्टिंग करके आप कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देखरेख का सवाल है, इसका देखरेख बहुत ही आसान है। इसमें आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि इनको, इनका जो ड्रिंकर है और इनका जो फीडर है, इन्हें एक बार आप दिन में फुल कर दीजिए। उसके बाद ये मुर्गा इस तरह का है कि ये पूरे दिन में अपने हिसाब से खाता रहेगा और अपने हिसाब से घूमता फिरता रहता है, ना तो ये जबरदस्ती खाएगा और ना ये किसी प्रकार का वेस्ट करेगा। तो अभी क्या है कि खाएगा और घूमेगा सुबह। इसमें क्या होता है, फीड्स में आप जो खिलाने की है, जैसे खिलाने के लिए, इसके लिए आप बाहर से, जैसे कि लो कॉस्ट में, जैसे कि आप मंडी वगैरह से या कुछ हरा चारा इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। इसकी एक स्पेशल फीड भी बनती है, जैसे कि आप 50% मक्का ले लीजिए और उसके अंदर फिर गेहूं लगा लीजिए 10%, उस तरह से फिर आप इसमें 5% सोयाबीन डाल लीजिए, 5% आप इसके अंदर मछली का जो एक चूरा आता है वो डाल लीजिए, राइस ब्रॉन आता है वो डाल लीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से 5-6 आइटम्स का मिला के हम इसका फीड बनाते हैं। जब भी स्टार्ट करें तो ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट किया जाए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से आप जाकर ले सकते हैं, और हमारे फार्म पे भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपको जो जोखिम से बचने में हेल्प मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं समझता कि कोई जोखिम है, और बहुत ही मुनाफे वाला है इसमें। आप ये समझ लीजिए कि दुगने तिगने पैसे होते हैं, क्योंकि कड़कनाथ एक ऐसा है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इसकी चाहत है अभी इस समय, क्योंकि कम फार्मर हैं और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है किसानों के पास। और हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें और इसको हम एक एक्सपोर्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, जिससे कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले समय में हम इसको, जो हमारा फ्यूचर है वो देख के चल रहे हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि हम अगर जैसे आपसे किसान से हम बात करते हैं कि आप हमसे एक बात पूछते हो कि हम इसे पाल तो लें बना तो लें लेकिन ये बेचेंगे कहाँ, तो इसी लेवल पे अभी गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है इसकी अवेयरनेस पूरे, अभी एग्जीबिशन के जरिए और न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका इसे धीरे धीरे इसमें बहुत ही ग्रोथ अच्छी मिल रही है। मैंने खुद 6 महीने के अंदर

0: कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको थोड़ा डेडिकेटिवली करें, जो भी, चाहे आप कोई भी फील्ड में आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुर्गी पालन कीजिए, कोई भी फील्ड में आप आए लेकिन उसको मन से करो, अपना समझ के करो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। કિસાન ભાઈઓ, આઈએ ડાલતે હે એક નજર ઝાવા કે મોસમ પર। ઝાવા કી કુલ વર્ષા 55.9 મિલીમીટર। अगर हम बात करें झाबुआ के तापमान की तो झाबुआ का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस से 34.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: दोस्तों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम फिलहाल कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी 1 सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
1: अब मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया क्यों ये मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था, अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं, इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, और हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और मतलब नुकसान होने पर फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
5: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं, CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफी CSC हैं इन सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
6: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रवि का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है, अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
7: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
3: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हम उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है, जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का नंबर खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाएं, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी
7: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
3: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं
7: कि
3: मौसम आधारित बीमा योजना में जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
7: जी बिल्कुल।
6: गन्ना भी है, वो भी बाहर है अभी उत्तर प्रदेश, क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
7: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
0: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ANA।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारियां हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
3: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
4: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं, ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
3: ठीक है,
4: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया है कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
3: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान।
5: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहाँ 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वो ऐसे जिले भी हैं जहाँ पर कि प्रीमियम जहाँ जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहाँ नहीं के बराबर है, वहाँ भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहाँ पर कि प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पर प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
3: कॉस्ट
5: बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसको भी कुछ जल्दी से
3: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
4: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए, बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
5: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए, तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
3: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
5: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए
3: किसानों के बीच में
5: से ही।
0: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
3: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
6: देखिए जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
3: जी।
6: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में, तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे, तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
3: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
0: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है, वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है कि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करें।
3: सुनील जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
4: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे, अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है, लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ, और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
1: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: कि किसान भाई को सराहता कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ,
3: जी।
4: मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
5: मैडम, एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जैसे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उस देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
3: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है, जो मूल्य है, उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
7: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
3: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
4: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है। इस और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें एमएसपी की घोषणा हो गई है, तो उस एमएसपी से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और एमएसपी के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
8: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
5: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
8: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
0: देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला एमएसपी है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको एमएसपी से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपेंसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खासतौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर हैं। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
8: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
0: तो किसान के हित में किया।
8: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
6: देखिए मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं। हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
8: काफी लोकप्रिय
6: हो रही है।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
4: देखिए मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से, वैसा कभी ना हो हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो है फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए, इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारे चीजें मिले, ये सारे चीजें हमको जानकारी
8: एक्सटेंशन वर्क जो है
4: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है, आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है, आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं, आधार, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी
8: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
4: ट्रांसपेरेंट वे करें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं, और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।

0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार का मंच दोस्तों नए कलाकारों का है, नए टैलेंट का है, नए गायकों का है। तो आज हमारे साथ दिलीप हिंगोरानी जी हैं, जो एक बहुत बहुत बेहतरीन गायक हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
2: पहले तो समीर जी, दिल से शुक्रिया मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी दिल से शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती समय दिया इसको सुनने के लिए। मैं दिलीप हिंगोरानी, मैं बेसिकली सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट चूंकि सरकारी नौकरी है तो ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो फिलहाल मेरा जो रेजिडेंस है वो फिलहाल मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ एज ए सीनियर डिविजनल मैनेजर।
1: जी दोस्तों, आपने सुना दिलीप जी नागपुर में हैं। हमारे पास नागपुर से बहुत सारे कलाकार हैं, हम उनको आपसे जोड़ देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। मैं नागपुर गया हूं 2-3 बार, मुझे वहां का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम शायद साहू रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, उसकी चेन है पूरी साहू भोजनालय ऐसा कुछ करके।
2: अच्छा,
1: तो
2: अच्छा,
1: बहुत ही ऑथेंटिक सेंट्रल महाराष्ट्र का खाना वहां मिलता है।
2: ये तो है।
1: कभी जाएं तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा वहां।
2: बिल्कुल, ये तो है। कैसा नागपुर, तो हर तरह से बढ़िया है
1: जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को, आप ही के प्रोग्राम को, दिलीप जी के गाए हुए इस बेहद खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत खूब, क्या शुरुआत है साहब। दिलीप जी, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बॉस, बचपन में मैं बेसिकली तो प्रोफेसर बनना चाहता था। प्रोफेसर मुझे, क्योंकि पढ़ाई करने का तो शौक था ही, लेकिन पढ़ाने का भी बहुत शौक था। बट सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे रहे कि हायर एजुकेशन भी आई, पीजी तक आया। फिर आगे फिर मैंने सोचा मैं पीएचडी करूंगा, लेकिन किसी कारणवश पीएचडी हो नहीं पाई। तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो ऑफर आ गई नौकरी की, सर्विस की, गवर्नमेंट सर्विस थी, छोड़ी नहीं, ज्वाइन कर ली। लेकिन जहां भी ईश्वर ने लिखा था वहां हम लोग सेटल हो गए और एंजॉय किया। अपनी आदत है, जहां भी जिस जगह जाओ अपना एंजॉय करो उसको। तो था, जरूर था, मैं टीचर बनना चाहता था, प्रोफेसर, बट ठीक है ये भी।
0: तो बहुत बढ़िया बात रही। दिलीप जी, अभी क्या देर हुई है, आइए ना, पीएचडी कर डालिए। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है या बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको पीएचडी करा सकती हैं। कोई एक प्यारा सा सब्जेक्ट चूज करिए, कर डालिए।
1: हाँ बिल्कुल, नहीं सही कह रहे हैं, पढ़ने की तो कोई उम्र होती नहीं है
0: जी,
1: है ना। और, तो अब जरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, जरा थोड़ा यहाँ से अभी 2-3 साल हैं, अभी थोड़ा रिटायर हो जाए, उसके बाद सोचते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी मैं अभी भी अपने डिपार्टमेंट में, मैं फैकल्टी मेंबर के हैसियत से कभी था, तो मैं पढ़ाता रहता था। तो अब भी वैसा शौक पूरा करता रहता हूँ मैं पढ़ाने का, भले ही मैं ऑफिशियल नहीं बना प्रोफेसर, लेकिन वो मैं शौक पूरा करता रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, आपने सुना, दिल में पढ़ाने की और पढ़ने की चाह लिए हुए हैं दिलीप जी। तो चलिए सुन लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, दिलीप जी का ही गाया हुआ।

0: अमेजिंग,
1: थैंक यू,
0: बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं दिलीप जी।
1: जी समीर जी,
0: आपके फेवरेट फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: टीचर तो खैर सभी फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरे एक टीचर थे, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो वो इंग्लिश की पोएट्री पढ़ाते थे
0: जी,
1: आहूजा करके थे, ये 80s की बात है। तो वो मुझे क्यों फेवरेट लगते थे, मैं उनका कोई लेक्चर मिस नहीं करता था। वो जब पोएट्री पढ़ाते थे ना, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, शेक्सपियर, जॉन कीट्स, तो वो मुझे भी लगता था कि थोड़ी देर पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे टीचर लगते ही नहीं थे, वो खो जाते थे उस कविता में। तो सारी जो क्लास थी हमारी, सारी की सारी ऐसा लगता था वो सीन कोई क्रिएट कर दिया उन्होंने, हम किसी असलियत में जी रहे हैं। तो मैं कहीं भी होता था, कितना भी कभी मेरी तबीयत खराब होती थी, लेकिन जिस दिन उन सर का लेक्चर हुआ करता था, मैं नहीं मिस करा करता था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी कि वो किसी चीज को पढ़ाने के लिए वो प्रैक्टिकली समझाते थे। तो एक बार वो चीज जब पढ़ा देते थे तो वो समीर जी दिमाग से निकलती नहीं थी बिल्कुल। तो वो मेरे फेवरेट टीचर रहे। वैसे तो मुझे सारे टीचर अच्छे मिले, बट आहूजा सर जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, वो बहुत ही बढ़िया स्टाइल था उनका पढ़ाने का, ही वाज माय फेवरेट।
0: बहुत खूब, क्या बात कही। आहूजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिलीप जी आपको दिल से रेस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों अगला गीत हम आहूजा सर को ही डेडिकेट करेंगे जो दिलीप जी ने गाया है।